0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 26, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: आस्तिक जन ईश्वर के प्रसन्न करबा लेल नानाविध उपाय काज में अने छथि। क्यों तपश्चर्या द्वारा ईश्वर के प्राप्त करबाक प्रयास करे छथि, क्यों जप योग आ समाधि द्वारा परम तत्व के प्राप्त करबाक चेष्टा करे छथि, क्यों तीर्थाटन करय लेल जाय छथि, तो क्यों भजन कीर्तन आदि द्वारा ईश्वर के प्रसन्न करय चाहे छथि। जतेक भक्त ततेक विधि विधान, किंतु वास्तविकता की थिक ई विचारणीय। साधनाक मार्ग बड़ कठिन अछि। जप योग समाधि आसन प्राणायाम द्वारा परम सत्ताक साक्षात्कार करब बड़ समय साध्य होइ छै। साधना बीच में खंडित भ सकै छै, तखन तो पछिला सबटा परिश्रम व्यर्थ। ओहुना आजुक व्यस्त जीवन में ककरा एते पलखक छै जे घंटा घंटा आसन लगौने रहत। दोसर बात ई जे साइते किनको क्यों एहन साधक भेटल हेथिन जे दावी कऽ सकथि जे हुनका परमेश्वर सँ साक्षात्कार भेल छनि। आब आओ व्यावहारिक धरातल पर। भूखल व्यक्ति के भोजन करायब ईश्वर के तृप्त करब कहल जाय छै। पियासल के पानि पियाब भगवाने के तृषा शांत करब थिक। आर्तजनक कष्ट दूर केने ईश्वर के प्रसन्नता होइ छनि। जीव मात्र सँ प्रेम करब ईश्वर सँ प्रेम करब मानल जाय छै। आधुनिक भारतक एकटा पैघ कवि कहब छनि जे रे पुजारी, तो देवालयक बंद द्वार के क्याक ओगरने छै, देवता की देवालय में रही छथि। नहीं, देवता देवालय में नहीं रही छथि। हुनकर दर्शन करक हो तो जो खेत में जतः रौद शीत आ वर्षा के सहि कृषक कृषि कार्य में सन्नद्ध छथि। देवता सँ भेंट करक हो तो जो श्रमिक सभिक लग जे पाथर तोड़ पथक निर्माण कर रहल अछि। अस्तु, ई सर्वमान्य मत अछि जे जँ ईश्वर के प्रसन्न करक हो तो जीव दया क्षमा परोपकार प्रेम आदिक उच्च भाव के अपनाबऽ पड़त। मनुष्य कोन कथा, प्राणी मात्र के अपन बंधु बूझि सबसँ सौहार्द भाव राखऽ पड़त। कारण

0: ईश्वर स्वयं अरूप रहि एही रस रूप गंधमय संसार में प्राणी मात्र में निवास करे छथि। तैं ओ अदृश्य रहितहु सर्वव्यापी छथि। हुनक सर्वव्यापकता के स्वीकार के निहार व्यक्ति के अशोभनीय कार्य से अनायासे विरति भ जाय छै। ओ व्यक्ति निखिल ब्रह्मांड में सर्वत्र सच्चिदानंदक दर्शन करै छै। एकटा महान साधक लग क्यों स्त्री पहुंचली या बाजली, हम भगवानक एतेक भक्ति करै छी मुदा भगवान हमरा आइ तक कहियो स्वप्नों में दर्शन नहीं देलनि, से कियाक? साधक बजला, एना तो नहीं हेबाक चाही। अच्छा थमू, हमरा भगवान भेटता तो हम पूछबनि जे ओ स्त्री अहाँक पूजा करै छै, धूप आरती करै छै, व्रत उपवास करै छै, अहाँ ओकरा दर्शन कियाक नहीं दै छियै? किछु दिन का बाद ओ स्त्री हुनका पुनः पूछलकनि, अहाँ भगवान सँ पूछलियनि? साधक बजला, हाँ हमरा भगवान भेटल रहथि। अहाँ तो पूछलियनि तो बजला, ओ स्त्री बड़ झगड़ा होइ छै, दिन राति टोल पड़ोसक लोक सँ लड़ैत रहैया, घरों के लोग ओकरा सँ प्रसन्न नहीं रहै छै, तैं ओकरा सँ भेंट करबाक हमरा इच्छा नहीं होइया। ओहि स्त्री के लेल साधकक ई कथन औषधि सिद्ध भेलै, ओकरा स्वभाव में परिवर्तन भ गेलै, स्वभावक रुक्षता आ वाणी के कर्कशता के स्थान पर मृदुता आ मधुरता आबि गेलै, ओकरा सर्वत्र स्नेह आ सौहार्द भेटऽ लागलै। किछु दिन का बाद ओकरा साधक जी पूछलखिन, कहू भगवान सँ भेंट घाट होइया कि नहीं? स्त्री बजली, हाँ आब तो भगवान हमरा सर्वत्र दृष्टिगत होइ छथि।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक प्रसारण। अब प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय है मोटे अनाज की उन्नत खेती, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं अनिल कुमार कर्ण।
2: किसान भाई लोकन, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आई कृषि चर्चा में हम सब एहन फसिल के संबंध में चर्चा करब जकर खेती के रकवा बड कम भेल जा रहल अछि, संगे स्वास्थ्यक हिसाब से ओ बड बेसी महत्वपूर्ण अछि। ओ अछि मोट अनाज वा श्री अन्न। सरकारक दिस से एकर खेती के बेस प्रोत्साहन देल जा रहल अछि। श्री अन्न वाला फसिल सब में मरुआ, सावा, कौनी आ गर्मा फसिल के रूप में चीना खेती कयल जाइए। एहि फसिल सबक संबंध में चाउर आ गहूम सँ बेसी पौष्टिक पदार्थ सब उपस्थित रहैए। मोट अनाज वाला फसिल सबक दाना में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज सब बेस मात्रा में उपस्थित रहित अछि। एकर अतिरिक्त लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी सब सेहो प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहैए। कुपोषण के एकटा नम्हर चुनौती जे जनसंख्याक बेसी लोक सब के घेरने अछि, ओहि सँ छुटकारा लेल एकर मात्र विकल्प अछि मोटगर के सेवन। पहिने ई अनाज सब हमर सभक भोजन के अभिन्न अंग छल, मुदा आधुनिकता के प्रभाव सँ ई भोजन के थारी सँ विलुप्त भ गेल। ई मोट अनाज सब उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सुपौल के किछ भाग सब में कयल जाइत अछि। तऽ आउ किसान भाई लोकनि एकर खेती सभक संबंध में विस्तार सँ गप करी। मरुआ के खेती खरीफ फसिल के रूप में कयल जाइए। एकर उन्नत प्रभेद सब अछि RAU 3, RAU 8। अपन सभक क्षेत्र के लेल ई प्रभेद सभक अनुशंसा कयल गेल अछि। मरुआ के सामान्य रूप सँ मुर्गी चारा, हरियर चारा, सुखायल चारा आ साइलेज बनाकर माल जाल के भोजन के रूप में व्यवहार कयल जाइए। मरुआ के रागी के दाना में प्रोटीन 9-10%, कार्बोहाइड्रेट 70-75%, वसा 3%, खनिज लवण 23%, लोहा आ मैग्नीज सब सेहो भरल होइत अछि। मधुमेह के रोगी के लेल ई मरुआ वरदान अछि। खेतक चुनाव के संबंध में जो विचार करी तो मरुआ खेती बाउल वाला दोमट माटि वा दोमट माटि में कयल जा सकैए, जाहि में जल निकासक व्यवस्था नीक रहे, ओ उपयुक्त मानल जाइत अछि। ई फसिल सब लगभग 90-100 दिन में तैयार हो जाइत अछि। बिया मरुआ खेती में 10-12 किलो

0: ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ बीया लगैत अछि। किसान भाई लोकनि एकरा रोपला सँ पहिने कैप्टॉफ, थीरम वा बेवेस्टिन अढ़ाई ग्राम प्रति किलोग्राम के दर सँ एहिसँ उपचारित निश्चित रूप सँ करबाक चाही। लगेबाक समय मरुआ के लगेबाक समय जून मास सँ जुलाई मास धरि अपने एकरा लगा सकै छी। रोपा में ध्यान राखी जे एक पाँति सँ दोसर पाँतिक दूरी 20-25 सेंटीमीटर आ एक गाछ सँ दोसर गाछक दूरी 15 सेंटीमीटर राखक चाही। एहिसँ गाछ के उचित विकास होइए। खाद उर्वरक के संबंध में गप करी तो नेत्रजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम आ पोटासक मात्रा 25 किलोग्राम सामान्य रूप से प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करक चाहिए। किसान भाई लोकन अ गप के ध्यान में रखल जाए जे नेत्रजन खादक आधा मात्रा, फास्फोरस आ पोटास खाद के संपूर्ण मात्रा रोपनी काल में दे देबाक चाहिए। नेत्रजन खाद के बाँचल आधा मात्रा 25-30 दिनक बाद देबाक चाहिए। जल प्रबंधन मरुआ के खरीफ फसल में ओना पानिक बेसी आवश्यकता नहीं होइत अछि, मुदा जल निकासक व्यवस्था निश्चित रूप से नीक ढंग से करबाक चाहिए। मरुआ खेती में खर पतवार के नियंत्रण लेल अंतर्वर्ती क्रियाक माध्यम से नियंत्रण करबाक चाहिए। जो किसान भाई लोकन लागल फसिल में चाकर पात वाला खर पात सब के बेसी प्रकोप भ जाए तो 2,4-D 0.6 किलोग्राम सक्रिय तत्व के 800 लीटर पानी में घोल बनाकर निक जका छिड़काव करबाक चाहिए। किसान भाई लोकन अपने ई काज फसिल लगेला के 20-25 दिनक उपरांत क सके छी। अंतर्वर्ती फसिल के रूप में दलहनी फसिल जना सोयाबीन, राहरि, मूंग आ उड़ीद के खेती सेहो अपने क सके छी। एहि संग आम आजुक कृषि चर्चाक समय सम्पन्न भ रहल अछि। अनिल कुमार कर्ण के चलवाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन

0: लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल
1: तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को

0: ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, जो आंख के रोग के विशेषज्ञ हैं, साथ ही गला, नाक, कान के भी विशेषज्ञ हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे अपने श्रोताओं के लिए मोतियाबिंद के कारण और उसके निदान पर। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद का ये है क्या, कारण क्या है?
4: मोतियाबिंद हमारे देश में अंधापन का प्रमुख कारण है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आँखों की पुतली के मध्य में एक पारदर्शक लेंस होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें आँखों के अंदर प्रवेश कर दृष्टि पटल, जिसे रेटना कहते हैं, पर छवि बनाती है और मनुष्य देख पाता। बढ़ती उम्र के कारण या किसी अन्य कारण से भी पारदर्शक लेंस में सफ़ेदी आ जाती है या लेंस अपारदर्शक हो जाता है,
3: यानी ये जो
4: अपारदर्शक लेंस को मोतियाबिंद कहते हैं।
3: इसके कारण क्या है?
4: मोतियाबिंद सबसे सामान्य मोतियाबिंद

0: बढ़ती उम्र के कारण 50 से 60 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और रोगी की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। उम्र के कारण जैसे बालों में सफ़ेदी, चमड़े में परिवर्तन होता है, उसी तरह लेंस में भी परिवर्तन आता है। हेरिडिटी या आनुवांशिकता की भी इसमें प्रमुख भूमिका है।
1: क्या इसमें खान पान का भी कोई असर होता है?
0: जी हाँ, निश्चित ही। भोजन में विशेष रूप से प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, खासकर विटामिन सी, राइबोफ्लेविन की कमी और विटामिन ई की कमी से मोतियाबिंद की संभावना बढ़ जाती है।
1: तो इसके अलावा और क्या क्या जो प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक या रासायनिक कारण हो सकते हैं जो आँखों पर असर डालते हैं?
0: अन्य प्रमुख कारणों में सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनका आँखों पर असर होता है, और यही कारण है कि हमारे देश में मोतियाबिंद के रोगी ज़्यादा हैं। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सिगरेट पीने वालों में भी मोतियाबिंद उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। चोट, आँखों में चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है।
1: क्या डायबिटीज़ वगैरह अगर किसी को हो रक्त में या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो, इन सब का भी असर होता है क्या मोतियाबिंद?
0: डायबिटीज़ का तो असर होता है, डायबिटीज़ के असर से मोतियाबिंद आँखों में हो सकता है, और आँखों में पहले से मोतियाबिंद है तो वो और उसका उपचार न किया जाए तो मोतियाबिंद जल्दी पकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चों में जन्म से ही मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा आँखों में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके असर से भी, जिनके कॉम्प्लिकेशन से भी मोतियाबिंद हो सकता है।
1: तो इसको कैसे पहचाने का, एक आम आदमी उसका लक्षण कुछ होता होगा जो पहचान सके?
0: जी हाँ, मोतियाबिंद के रोगी के आँखों की रोशनी बिना दर्द के धीरे धीरे कम होती जाती है। एक ही चीज़ का दो या तीन दिखना या चार दिखना, इसे डिप्लोपिया या पॉलियोपिया कहते हैं, ये हो सकता है। और आम तौर पे ये भी देखा गया है कि किसी रोशनी के स्रोत के चारों तरफ रंग बिरंगे धारियों वाले, जिसे कलर्ड हैलोज कहते हैं, वो उत्पन्न होता है, और रोगी की शिकायत होती है कि उसे रोशनी के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग दिखाई पड़ रहा।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की स्वास्थ्य चर्चा में मोतियाबिंद क्या है, उसके लक्षण क्या है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं

मेरी अम्बे जय जगदम्बे। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे मधुष्मिता के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

राम नाम से जगमग है। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल के स्वर में। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

अभी आप सुन रहे थे शर्मा बंधु को। वंदना की अंतिम प्रस्तुति पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ये भक्ति गीत।

पंडित भीमसेन जोशी के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंदेश्री को।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो।

इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में स्वर सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंदेश्वरी कथा। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

अब श्रोताओं आपको जानकारी दे दें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 10:00, 12:00

दिन के 11 बजे समय होगा शास्त्रीय संगीत का। कलाकार होंगे अलाउद्दीन खान। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे आप श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:40 पर और संध्या 7:52 पर। हफ्तावार जायजा हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:10 पर। विद्यापति गीतों का समय होगा संध्या 6:15 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद। सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे शाम 6:30 से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे नन्हा मुन्ना राही। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00।

रात 8:15 पर आप सुनेंगे हमारा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। साहित्य की का प्रसारण समय होगा रात 9:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे रात 10 बजे से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरित पताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंदनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 crore rupees विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिंदनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ं प्रति प्रस्थास्यति। यत्र अपराह्णे पादो

0: द्विवादने सः सप्तशताधिकचतुस्सहस्ररूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मकपरियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री पञ्जाबस्य जालन्धरनगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः सप्तत्यधिकचतुश्शतोत्तरपञ्चसहस्ररूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोकसंवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् कतरदेशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतरदेशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतरदेशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं, भारत कतर सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगि दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः, सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः, प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के

0: कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

0: चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल के जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC Under-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: एहन अइ जे राति कऽ अपना सबके पंखा होकैत होकैत बीतल हँ। कार्यक्रम के शुरुआत अपना सब करै छी सुविचार से, त आजुक सुविचार पहले श्रोतागण के कह दियन।
1: जरूर, मनुष्य कितने भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। ये विचार हैं गौतम बुद्ध के।
0: बहुत सुंदर अहाँ जे विचार कहलहुँ हाँ, महात्मा बुद्ध के, बड़ा नीक गप अछि जे केवल हम श्रेष्ठ छी और केवल हम ही श्रेष्ठ छी, यह अंतर अछि मनुजी आत्मविश्वास और अहंकार का। मनुख कतेको गोर किया नहीं हुए, सुंदर सफल व शक्तिशाली किया नहीं हुए, मुदा हुनकर जे छाह होइत अछि ओ सदैव कार्य होइत अछि। ई अपना सबके मून पढ़बैत अछि जे हरेक व्यक्ति में किछ सीमा और किछ कमी होइत अछि। अपन योग्यता पर विश्वास रखनाय आत्मविश्वास है, कियाकि अपना सबके यह आगू बढ़वाक प्रेरणा देत अछि। मुदा जखन व्यक्ति ई मानो लागत जे केवल हम ही श्रेष्ठ छी और बाकी सबटा ओहिसे कम छथि, तखन ई आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाइत अछि। मनोजी, आत्मविश्वास अपना सबके सम्मान दियाबैत अछि, जखन कि अहंकार सम्मान छीन लैत अछि। ताहि कारणे सफलता के लेल विनम्रता बना कर रखनाइए सत महानता का पहचान अछि।
1: और इसी के साथ डालते हैं, आज है 17 जुलाई का दिन क्यों है खास, उस पर एक नज़र। आज ही के दिन 1994 में धूमकेतु सुमेकेट लेवी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया था। 2006 में कैप केबनर फेलोरिड के स्पर्श सेंटर में अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर डिस्कवरी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सुकसल उतरा था। 1997 पूजा सिंघांग भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान का जन्म हुआ था।
0: और संग ही 1850 में हावर्ड वेधशाला से पहल बेर कोनो तारा का चित्र लेल गेल छल 1850 में। 1948 में भारतीय महिला के प्रशासनिक और पुलिस सेवा में शामिल हेबाक अधिकार भेटल छल। और
1: आज से के दिन 1971 में रवि किशन हिंदी और भोजपुरी फिल्म के अभिनेता का जन्म हुआ था।
0: अरे वाह। और 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के स्थापना के लिए रोम संविधि का सेहो अपनाओल गेल छल। तो ई छल आजुक जे खास गप छल से सब।
1: ऐसे के साथ चलते हैं मैथिली सुगम संगीत की तरफ और सुनते हैं।
0: निश्चित रूप से, कियाकि श्रोतागण जे छथि से भोर का जे शुभारंभ छथि से ओ करय चाहै छथि गीते नाद से।
1: हाँ हाँ।
0: तो पहले सुनी सुंदरसन मैथिली गीत।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोतागण का आशुतोष कुमार झा दिस स्वागत आ नमस्कार। संग ही मनोजी अहूँ का नमस्कार।
1: नमस्कार आशुतोष जी, और साथ ही तमाम नमस्कार मिथिला सुनने वाले श्रोताओं को मनोज का प्यार भरा नमस्कार।
0: बहुत सुंदर, और देखिए रहल छी जे अपना सबके इंतजार बरखा के बहुत बेसी भ रहल है ना।
1: हाँ।
0: गर्मी के स्थिति जे है से अखन तो बुझू

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने

0: किसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हम लोग सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत, उम्मीद करते हैं श्रोता को पसंद आया होगा। इसी के साथ चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियां संस्कृति पर डालते नजर, यानी कि हाल चाल लेकर के उपस्थित हैं आशुतोष झा।
3: सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि सबक हलचल हाल चालक संग हम छी आशुतोष कुमार झा। सरकारी स्कूल सब में लाइव क्लासेज और JEE नीट के लिए मुफ्त कोचिंग भेल प्रारंभ। मुख्यमंत्री पटना में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय स्कूल से कैलन एकर शुरुआत। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन जे स्मार्ट क्लास, लाइव लर्निंग, डिजिटल शिक्षा आ प्रतियोगी परीक्षा उन्मुख शिक्षण के माध्यम से राज्य के हरेक विद्यार्थी के नीक भविष्य के लिए सशक्त काज बिहार सरकारक संकल्प अछि। ई पहल बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में नव ऊंचाई तक लऽ कऽ जायत, संगहि राज्यक विद्यार्थी सबके राष्ट्रीय आ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेहो बनायत। मुख्यमंत्री ई सब गप बृहस्पति दिन पटना के शास्त्री नगर स्थित राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में बिहार स्कूल लाइव क्लासेज के शुभारंभ करबाक बाद कहलनि। 65 सड़क परियोजना सबसे सुधरत ग्रामीण कनेक्टिविटी। ग्रामीण कार्य विभाग का सुलभ संपर्कता योजना के तहत राज्य में 65 महत्वपूर्ण सड़क परियोजना सब पर तेजी से काज चल रहा है। एहि से ग्रामीण क्षेत्र सब में नीक कनेक्टिविटी भेटत। योजना के पहले चरण में 181 किलोमीटर नमहर नवका संपर्क मार्ग आ वैकल्पिक सड़क सबक निर्माण आ खराब सड़क सबक नीक कैल जा रहा है। एहि से गांव सबक सीधा जुड़ाव, अस्पताल, बाजार, प्रखंड, अनुमंडल, जिला मुख्यालय, संगहि राष्ट्रीय आ राजकीय राजमार्ग सबसे भऽ सकत। ग्रामीण कार्य विभाग का कहना यह अछि जे एहि योजना के उद्देश्य केवल सड़क निर्माण नहीं बल्कि ग्रामीण सभा के प्रमुख संस्थान तक कम दूरी आ कम समय में पहुंच सुनिश्चित केनाइ अछि, जाहि से क्षेत्र सब में मौजूदा सड़क संपर्क नमहर, जटिल आ अनुपयुक्त अछि, ओतो वैकल्पिक मार्ग सबके प्राथमिकता देल गेल अछि। कमलावलान नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण लोकसभ चिंतित छथि। कमलावलान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ लागल हँ। नेपाल के तराई में बरखा हवा से नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ गेल अछि। धार के तटबंध के कात बसल गाम के लोकसभ में एहि से चिंता बढ़ रहल अछि। नदी के जलस्तर बढ़वा से भेरियाराही गाम के संगहि संग ठेंगहा, देवना, मोतना जाय समेत आधा दर्जन गाम के लोक पर सीधा असर पड़ सकत अछि। नाव नदी पार करबाक लेल नाव का सहारा लेल जायत अछि। जलस्तर में वृद्धि के देखत फ्लड कंट्रोल डिवीजन दूटा तटबंध का संवेदनशील स्थान चिन्हित करबाक तैयारी शुरू कऽ देलनि अछि। अंदामा कबीर महोत्सव के भेटल राजकीय दर्जा। प्रखंड क्षेत्र का ब्यूनी अंदामा पंचायत का अंदामा गांव का कबीर संस्थान का बिहार सरकार दिस से पैघ सौगात भेटल अछि। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा का अवसर पर आयोजित हुए वाला सदगुरु कबीर महोत्सव का राजकीय सांस्कृतिक कैलेंडर 2026 में शामिल कऽ ओकरा राजकीय दर्जा देल गेल अछि। एहि खबर से पंचायत में खुशी के लहर अछि। एहि संबंध में कला संस्कृति आ युवा विभाग बिहार सरकार का आधिकारिक आदेश जारी कऽ देल गेल अछि। अंदामा कबीर संस्थान सदगुरु कबीर के तपोस्थलिक रूप में प्रसिद्ध अछि। एतो हरेक वर्ष माघ पूर्णिमा का अवसर पर आयोजित हुए वाला कबीर महोत्सव में देश विदेश कबीर पंथी, साधु संत, महात्मा, श्रद्धालु, पर्यटक और अनुयायी सब शामिल होइ छथि। महोत्सव के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आ आध्यात्मिक पहचान के देखत राज्य सरकार एकरा राजकीय मान्यता प्रदान केलक अछि। 25 पंचायत में कार्यपालक सहायक कैल गेला पदस्थापित। प्रखंड क्षेत्र के पंचायत सम काज सबके गति देबाक लेल नव पदस्थापित पंचायत कार्यपालक सहायक सब और पूर्व से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर का

0: ग्राम पंचायत में बृहस्पति दिन आवंटन क देल गेल। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रमेश कुमार कार्यालय आदेश जारी क 23 पंचायत में कर्मी के तैनाती कलन है। बीआरओ कहलन ई आवंटन जिला पदाधिकारी के निर्देश का आलोक में कैल गेल। योगदान देवला नव कर्मी और पहले से पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेशन के बीच में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पंचायत का बंटवारा कैल गेल। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कैल गेल। उपेंद्र झा व्यास का रचना मैथिली साहित्य का अमूल्य धरोहर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पीजी मैथिली विभाग में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार उपेंद्रनाथ झा व्यास का जयंती पर ऑनलाइन व्याख्यान भेल। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार कर्ण का अध्यक्षता में आयोजित व्याख्यान का विषय मैथिली साहित्य का गौरव उपेंद्रनाथ झा व्यास छल। मुख्य वक्ता LNJ कॉलेज झंझारपुर का प्रधानाचार्य प्रोफेसर नारायण झा कहलन जे उपेंद्रनाथ झा व्यास अनेकहूँ भाषा का विद्वान हेबाक बावजूद मातृभाषा मैथिली के प्रति आजीवन समर्पित रहलथि। 5 दिवसीय प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहवला 20 शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगल गेल। कक्षा 3 से 5 के शिक्षक का 5 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहवला 20 शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई के तैयारी शुरू कैल गेल। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा संजय कुमार संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण तलब कैलन। टेराकोटा फैसिलिटी सेंटर के जीर्णोद्धार का उद्योग का उद्देश्य मंत्री से भेंट कैलथ सांसद। सांसद गोपाल जी ठाकुर बृहस्पति दिन पटना में बिहार के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह से भेंट कैलथ। दरभंगा के मदारपुर स्थित टेराकोटा कॉमन फैसिलिटी सेंटर के जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण आ जल्दीय संचालन का मांग उठेलन। श्रोतागण एखन अपना सब सुन रहल छी हाल चाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोतागण एखन अपना सब सुन रहल छी आकाशवाणी दरभंगा से हालचाल। 18 जुलाई के विशेष लोक अदालत लागत। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बताओल गेल जे प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला और सत्र न्यायालय दरभंगा के निर्देशानुसार विशेष लोक अदालत 18 जुलाई का सिविल न्यायालय दरभंगा, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर और व्यवहार न्यायालय बिरोल परिसर में 10:15 से आयोजित कैल जायत। विशेष लोक अदालत के लेल पीठ के गठन सेहो कैल गेल। गौरतलब है जे न्यायिक अधिकारी निर्धारित समय पर पीठ में उपस्थित रहत। विशेष लोक अदालत में नियुक्त क्लर्क आदेश पत्र लिखता, विधिवत निर्णय तैयार करता और लोक अदालत का कार्रवाई पूरा हेबाक बाद कैल गेल मामला के सूची सचिव DLSA का प्रस्तुत करता। संबंधित न्यायालय के सबटा क्लर्क का निर्देशित देल जात है जे अपना कार्यालय में आवश्यक मामला के रिकॉर्ड के संगे संग वो अपने उपस्थित रहत। सहायक निदेशक आशीष अमन द्वारा सदर प्रखंड का 20 दिव्यांगजन के देल गेलन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में सदर प्रखंड दरभंगा के 20 पात्र दिव्यांगजन के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वितरण पुअर होम दरभंगा से कैल गेल। इस सराहनीय डेग का उद्देश्य दिव्यांगजन के जीवन का सुगम बनेनाय, हुनका आत्मनिर्भर बनेनाय सेहो अछि। ई वितरण काज सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण दरभंगा आशीष अमन द्वारा कैल गेल। एहि कार्यक्रम के दौरान किछ बिंदु पर विशेष ध्यान गेल गेल, जेना कि वाहन चलेबाक उचित प्रशिक्षण, UDID कार्ड का अनिवार्यता। 23 अगस्त के हैत विभागीय राजभाषा हिंदी टिप्पणी और प्रारूपण परीक्षा। 28 जुलाई 2026 तक करायत प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय में आवेदन। प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय दरभंगा द्वारा जानकारी देल गेल अछि जे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा बिहार पटना के तत्वाधान में विभागीय राजभाषा हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा संगहि हिंदी लिखवा पढ़वाक योग्यता परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त रवि दिन कैल जायत। प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय दरभंगा के प्रमंडल के सब

0: संबंधित विभाग पदाधिकारी और कर्मचारी के सूचित कैल गेल अछि जे उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्वान 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक कैल जायत। परीक्षा के तिथि 23 अगस्त रवि दिन अछि। ऑफलाइन आवेदन का अंतिम तिथि 28 जुलाई। विस्तृत विज्ञापन आवेदन फॉर्म राजभाषा विभाग का वेबसाइट rajbhasha.bihar.gov पर उपलब्ध अछि। तो श्रोतागण ई अपना सब सुन रहल छलो आकाशवाणी दरभंगा से हालचाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोतागण आब समय भ गेल हँ जे अपना सब मौसम के संबंधित जे जानकारी है से ली। तो मनोज जी की अछि मौसम से संबंधित जानकारी?
3: जरूर, ग्रामीण किस मौसम पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान के सहयोग से जारी। बेगूसराय को छोड़ करके उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में 15 से 17 जुलाई के दौरान में गर्जन एवं वज्रपात की संभावनाएँ हैं। साथ ही कहीं कहीं हवा तेज हो सकती है। इस अवधि में अधिकांश क्षेत्रों में हल्के मध्य वर्षा हो सकती है और भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इस दौरान ज़्यादातर समय आसमान में हल्की से मध्य बादल देखे जा सकते हैं। वर्षा होने की स्थिति में आसमान में घने बादल छा सकते हैं। पूर्वानुमान में अवधि के दौरान अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 32 सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि बेगूसराय, वैशाली, शिवहर एवं पूर्वी चंपारण जिलों में यह 34 से 36 सेल्सियस के बीच रह सकती है। न्यूनतम तापमान 24 से 28 सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं हैं। सुबह में सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85% रहने की संभावनाएं हैं।
0: तो इस मौसम का संबंधित जानकारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: तो मनोज जी ई छल मौसम से संबंधित जानकारी और श्रोतागण का अब जे प्रतीक्षा छन जे आब किछ लोकल अपडेट सेहो हुनका भेट जान।
3: जरूर, अगर बात करें नगर निगम में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मिर्स पशु आदि से संबंधित शिकायतों को लेकर के, तो निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 62027774 पर शिकायत कर सकते हैं। बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के नंबर हैं, शहर के मोबाइल नंबर है इस प्रकार 77-63-81-87-77, ग्रामीण क्षेत्र के हैं 92-64-45-64-12 और बेनीपुर तरफ के हैं 76-33-99-78-31 पे संपर्क कर सकते हैं। अगर रेल की बात करें तो सुबह 8:15 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:33 पर हैं पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस और शाम 7 हैं नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमान की अगर बात करें तो 9:30 पर हैं मुंबई के लिए, जो रोज़ाना इसका समय है। 11:30 पर हैं दिल्ली के लिए, 12:25 पर हैं कोलकाता के लिए, 12:50 पे दिल्ली के लिए, 1:35 पे मुंबई के लिए, 3 हैं हैदराबाद के लिए और 4:35 पे हैं दिल्ली के लिए।
0: तो ई छल लोकल अपडेट।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी

0: चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एखन जे अहाँ देलहुँ हँ लोकल अपडेट आ ओहिसँ पहिले मौसमके जानकारी जे देलहुँ से कनि तऽ हमरा लागल अवश्य जे फेर अपनासभ जे छै से गर्मीसँ राहत भेटत, मुदा अपनासभके सुरक्षाके ध्यान सेहो राखऽ पड़त नहि?
2: सही बात है। अस्तो जी, देखें तो ये गर्मी बरसात ये सब प्राकृतिक का देन है।
1: ठीक
2: है, संतुलित जीवन की सबसे बड़ा चीज है जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
1: बहुत बहुत।
2: जैसे अगर देखा जाए तो जीवन के आधार हैं जो वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीव जंतु सभी प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। मनुष्य का प्राकृतिक पर ही सब कुछ निर्भर है। यदि प्राकृतिक संतुलित रहती है तो मानव सुखी और समृद्ध खुशहाल रहते हैं। लेकिन आधुनिक युग में बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और संसाधन के अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक का संतुलन लगातार बिगड़
1: जा रहा है।
2: इसका परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट प्राकृतिक आपदाएं के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। बात करें तो अभी आशुतोष जी, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जगह तो पानी चापाकल से हमें आसानी से मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ जगह देखें जो आज चापाकल सूख रहा है।
1: ठीक है, कहलो।
2: जिसका कारण है कि बारिश नहीं होना, पानी हमें लेयर जो कहते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चल जाने के कारण आज हमें पानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें देखने के लिए मिलता है।
1: बहुत नीक अहाँ गप कहलो हाँ, जे प्रगति के संग संतुलित जीवन जीवाक एकटा कला जी है वह अपना सबके सफलता दे आबैत है। मुदा एकटा गप है मनोजी, जे देखियो अपना सबके मंगनी में जे चीज भेटत है ना, ओकर अपना सब मोल कनी देरी से बुझे छे। आब जना कोरोना के आयल छल तो अपना सबके केना ऑक्सीजन के महत्व, बाकी अपना सबके संस्कृति संस्कार सबके मून पड़ गेल छल। मुदा यह अगर अपना सब अपन जीवन में संतुलित क के राखब, यह अगर अपना सब अपना जीवन में लगातार एकटा नियम बना के राखब तो हमरा नहीं लगे कि कखनो एहन विपदा आबि सकैत अछि ने।
2: सही बात।
1: प्रगति तखने सार्थक होइत अछि जखन ओकरा संग जीवन में संतुलन सेहो बनल रहे। केवल धन पद प्रसिद्धि या पाबि लेनाइ जे छै से सफलता नहीं अछि, बल्कि परिवार, स्वास्थ्य, नैतिकता, मानसिक जे शांति अछि ने, ओकरो संग लऽ कऽ आगू बढ़नाइ जे अछि ओ वास्तविक उपलब्धि अछि। जे व्यक्ति अपन महत्वाकांक्षा के संग अपन रिश्ता नाता समय आ मूल्य के सम्मान करे छथि वह जीवन के एकटा जे छै सत विजेता बने छथि। हम सब देखै छियनि पछवा टोल में बच्चा के काके पूरा गाम में कोनो चीज हैत लोग हुनका से भेंट करे ले जेबे करे छथिन, हुनका से राय विचार लेबे करे छथिन। ओकर पाछा कारण की छै? हुनकर व्यक्तित्व एहन छनि, हुनकर विचार एहन छनि जे सबके संग लऽ कऽ चले छथि ने।
2: सही बात।
1: तऽ इएह जे छै से जीवन के गति के आगू बढ़बैत अछि। और अपना सबके कार्यक्रम के गति के आगू की बढ़बैत अछि मनोज जी? गीत नाद।
2: गीत नै जरूर।
1: पहले अपना सब एकटा सुंदर सन मधुर संगीत का आनंद लली, तकर बाद फिर आगू कार्यक्रम में हेतै गपशप।
2: तो आइए सुनते इस प्यारे से गीत को।

गांधी कथा में सबसे पहले प्रस्तुत है बापू के जीवन से लिया गया संस्मरण। गांधी जी कहते थे कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कच्चे सूत की भांति नाजुक और संवेदनशील होते हैं। हमें सोच विचार करके ही कोई भी व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो सामने वाला व्यक्ति कब और किस बात पर रुष्ट हो जाए इसका अनुमान लगाना भी कठिन होगा। अतः जरूरत इस बात की नहीं है कि आप कितनी स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपितु यह जरूरी है कि आपकी बात में कितनी सच्चाई निहित है। वर्धाश्रम में ही श्री हरिभाव उपाध्याय के एक दोस्त रहते थे जिनकी एक लड़की थी। एक मित्र उस लड़की से विवाह करना चाहते थे, परंतु वे यह मालूम करना चाहते थे कि वह लड़की

यह विवाह करना चाहती है या नहीं। इस संबंध में उन्होंने श्री हरिभाव जी से कहा, लड़की बालिक थी इसलिए उससे पूछना कोई गलत नहीं था, परंतु जब उसके माता पिता को इस बात का पता चला तो उन्हें यह संबंध अनुचित लगा। जब गांधी जी तक यह बात पहुंची तो उन्होंने हरिभाव जी से पूछा, यदि कोई तुमसे बिना पूछे तुम्हारी लड़की से वार्तालाप करना चाहे तो तुम्हें ठीक लगेगा? हरिभाव जी ने कहा, मैं इस लड़की के माता पिता के व्यवहार से भली भांति परिचित हूँ। इनकी तरह का कोई व्यक्ति पूछे तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई गलत भावना का समावेश नहीं होगा। गांधी जी ने उत्तर दिया, तुम पिता होने के कारण अपनी लड़की के प्रति अपने कर्तव्य से अनजान हो और इसी भ्रम के कारण तुमने लड़की से वार्तालाप की। इससे उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हरिभाव जी ने कहा, मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन्हें कोई कठिनाई होगी। माता पिता तो ऐसे कार्यों में सीधे लड़की से बातचीत न करते हुए हम जैसे मित्रों का ही सहारा लेते हैं। यदि उन्हें इस बात से दुख हुआ है तो मेरा कर्तव्य है कि उनका कष्ट दूर करूं। गांधी जी बोले, हम कई बार सद्भावना से कार्य कर जाते हैं जिनसे कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मानव को सदैव सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। हम जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करें, यही नियम है। हमें दूसरों के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए।

लीजिए अब सुनिए बापू की आत्मकथा से धारावाहिक उद्धृत अंश। काली माता के प्रत्यर्थ होने वाला विकराल यज्ञ देखकर बंगाली जीवन जानने की मेरी इच्छा बढ़ी। ब्रह्म समाज के विषय में काफी पढ़ा सुना था। प्रताप चंद्र मजूमदार का जीवन वृतांत थोड़ा जानता था, उनके व्याख्यान सुनने गया था, उनका लिखा हुआ केशव चंद्र का जीवन वृतांत भी प्राप्त किया और उसे चाव के साथ पढ़ गया। साधारण ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज का भेद जाना, पंडित शिवनाथ शास्त्री के दर्शन किए, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के दर्शन करने प्रोफेसर कॉथवेट के साथ गया, पर वह उस समय किसी से मिलते न थे इसलिए उनके दर्शन न हो सके, पर उनके यहाँ ब्रह्म समाज का उत्सव था, उसका निमंत्रण पाकर गए थे। वहाँ उच्च श्रेणी का बंगला संगीत सुनने का अवसर मिला, तभी से बंगला संगीत पर मुझे अनुराग हो गया। ब्रह्म समाज का यथाशक्य निरीक्षण कर लेने के बाद स्वामी विवेकानंद के दर्शन न करूं यह कैसे हो सकता था। मैं बड़े उत्साह से बेलूर मठ गया और लगभग पैदल चल कर गया, पूरा चला या आधा यह मुझे अब याद नहीं रहा। मठ का एकांत स्थान मुझे बहुत पसंद आया। यह समाचार सुनकर निराश हुआ कि स्वामी जी बीमार हैं, उनके दर्शन नहीं हो सकते और वह अपने कलकत्ते वाले मकान में हैं। भगिनी निवेदिता के पास स्थान का पता लगाया, चौरंगी के एक भवन में उनके दर्शन प्राप्त किए, उनका तेज देखकर मैं सहम गया। बातचीत में भी हमारा मेल अधिक नहीं जमा। मैंने यह बात गोखले से कही, वह बोले, मैं समझता हूँ कि यह देवी बहुत तेज है, अतः उसे तुम्हारा मेल नहीं बैठ सकता।

0: हम लोग सुने थे गांधी कथा, और इसके साथ चलते हैं आशुतोष जी।
1: चर्चा से हो बजबाक चाहिए ना।
0: जी हाँ, देखिए कि अभी के समय में लोग जो है सो खेलने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, योगा व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, पर खेल से निखरते हैं व्यक्तित्व। मनुष्य के जीवन में खेल अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वे व्यक्ति के शरीर मानसिक और सामाजिक और नैतिक विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते
1: हैं। बहुत बेसी ठीक है कहलो वहाँ जे खेल केवल मनोरंजन व शारीरिक व्यायाम का माध्यम नहीं, बल्कि वो व्यक्तित्व निर्माण के एकटा सशक्त स्कूल सेहो अछि। खेल मनुख का अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व करबाक क्षमता आ टीम भावना का एकटा अमूल्य पाठ पढ़बैत अछि। मनोज भाई, मैदान में खिलाड़ी जीत और हार दोनों का सामना करते अछि, मुदा हुनका में विपरीत परिस्थितियों में संयम बना कर रखबाक जे क्षमता अछि ई खेले करते अछि ना।
0: बिल्कुल,
1: अपना सब कबड्डी खेलाई छी, पकड़ा पकड़ी खेलाई छी, पिट्टो खेलाई छी, किछो कोनो खेल अगर खेलाई छी तो लगातार अपना सब जे देखे छी हार हुए या जीत अपना सब का उत्साह जे अछि से बनल रहत अछि। मुदा आजुक जे डिजिटल युग अछि जत बच्चा युवा मोबाइल और कंप्यूटर में बेसी समय बितब लगल हँ, ओत खेल का महत्व और बेसी बढ़ जात अछि। ठीक है, अहाँ कहलहुँ हँ,
0: बिल्कुल सही है कि खेल मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। खेल के दौरान खिलाड़ी को अनेक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जिनमें उसे तुरंत निर्णय लेना होता है। इससे उसकी सोचने समझने की क्षमता तथा समस्याएं समाधान की योग्यता भी विकसित होती है।
1: ठीक है कह रहा हूँ, नियमित रूप से जो अपना सब खेल में

0: भाग लै छी त अपना सबके शरीर स्वस्थ मन प्रसन्न आ विचार जे रहैत अछि से सकारात्मक रहैत अछि। खेल तनाव के कम करैत अछि, एकाग्रता बढ़बैत अछि आ अहाँ कहबे केलहुँ हँ जे निर्णय लेबाक क्षमता के मजबूत बनबैत अछि। इएह गुण जीवन के हरेक क्षेत्र जेनाकि शिक्षा, व्यवसाय, समाज आ नेतृत्व में सफलता प्राप्त करबा में सहायक होइत अछि। मनोजी, खेल इहो सिखबैत अछि जे सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, कड़गर मेहनत और लगन से भेटैत अछि। ताहि कारणे प्रत्येक विद्यार्थी और युवा के अपन दैनिक दिनचर्या में खेल के लेल समय अवश्य निकालबाक चाही। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन आ उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण खेल के माध्यमे से संभव अछि। वास्तव में खेल केवल नीक खिलाड़िये से नहीं बल्कि नीक नागरिक और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण सेहो करैत अछि।
1: तो सुतो जी, अब हमें हमें स्टूडियो की खड़ी भी इशारा कर रही है श्रोता को एक प्यारा सा गाना और सुनवाना चाह रहे थे, तो
0: सुना जाए
1: गीत को।

0: तऽ निश्चित रूपसँ अपना सबके तऽ मोन पड़िते अछि अपना सबके बचपनके दिन, मुदा आब समय संकेत कऽ रहल अछि जे आब अपना सब श्रोतागणसँ विदा सेहो ली।
1: तो इसी वादे के साथ फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात, तब तक के लिए मनोज को
0: और आशुतोष कुमार झा का विदा दी।
1: नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।

0: या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जिंदगी कैसी है बहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल, प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकन खायब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
3: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
7: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
8: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
9: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
8: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
7: आकाशवाणी दरभंगा सुनते

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

फिनटेक के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में

0: और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने

0: के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमायण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कन्नडम महीने को रामायण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं। आज से कन्नडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रामायण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत।

0: नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish e Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10 coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity. electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकात से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा के अपने दौरे में वजीर आजम जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी इख्तियार करने की सम्त एक अहम कदम है। अंदरून मुल्क वसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये रेलगाड़ी बनाई गई है, जिससे जदीद तर्ज की रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। इस तरह भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जहाँ हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने इसे तकनीक की आजमाइश करने वाले कई दीगर मुल्कों पीछे छोड़ते हुए मशहूरा प्रोजेक्ट के जरिए एक नया आलमी पैमाना तय किया है। जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर

0: दो या तीन रेल डिब्बे ही होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली हाइड्रोजन रेलगाड़ी तैयार की है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इसमें तकरीबन 2600 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन निजाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। जीन से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन से चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो दोपहर 2:45 बजे के आसपास 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक जलसे से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर पंजाब के जालंधर का दौरा करेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करना और खित्ते में इकतसादी तरक्की को रफ्तार देना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम ज़ाती तौर पर जालंधर कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद 20 रियासतों के नए सिरे से तामीर किए गए 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। इन स्टेशनों को दुनिया के सबसे बड़े तामीर नौ प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नए सिरे से तैयार किया गया है। वजीर आजम जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह हफ्ते में 3 दिन चलने वाली पहली बराह रास्त एसी ट्रेन होगी, जो भारत के दो अहम तरीन रूहानी और सकाफती मकामात अमृतसर और वाराणसी को मरबूत करेगी। वजीर आजम 30.9 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे समेत कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों से मिलने, नीज रेलवेज, हिफ्जान सेहत, सकाफत, कनेक्टिविटी, तालीम और दीगर शोबों से वाबस्ता मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होने के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इन सभी प्रोजेक्टों से लोगों की जिंदगी, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। जराई ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान वो सरहदी सिक्योरिटी, हुक्मरानी, अमनो कानून और तरक्की पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। कल जनाब शाह 18वीं बटालियन सरहदी अगली चौकी पर बीएसएफ के एहलकारों से बातचीत करेंगे। वो बीएसएफ से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। दोपहर में वो मगरबी बंगाल में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक मीटिंग की सदारत करेंगे। जराए ने मजीद कहा है कि वजीर दाखिला रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का भी जायजा लेंगे। दिल्ली हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स के साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5 बरस तक इख्तिरा और खुद रोजगार के लिए रकम इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी 11 रियासती यूनिवर्सिटियों, 13 हुकूमत के इमदाद याफ्ता कॉलेजों, ITI और हुकूमत के पॉलिटेक्निक इदारों का इहाता करेगी। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों के तलबा इन इदारों में पॉलिसी के फवायद हासिल कर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कामयाब तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती इंक्यूबेशन पॉलिसी निगरानी कमेटी पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया जाएगा, जो पॉलिसी के निफाज पर नजर रखेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर अपनी ताजियत का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अमीर कतर के वालिद की मीरास एक ऐसे वक्त में, जबकि वो अपनी कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं, दोनों मुमालिक की रहनुमाई जारी रखेगी। उन्होंने भारत के लिए उनकी गहरी उनसियत, कतर में भारतीय बिरादरी के लिए गर्मजोशी और भारत कतर ताल्लुकात के लिए उनके अज़्म को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा कराए गए

इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और मुतालिका प्रोग्रामों में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दस्तियाब हैं। एनटीए ने कहा है कि नतीजों का ऐलान बरवक्त कर दिया गया है ताकि मेडिकल दाखिले और काउंसलिंग के प्रोग्राम मुतासिर न हों। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 5,440 मराकज पर कराए गए दोबारा इम्तिहान में मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार बैठे थे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान में कायम जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन ज़िले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खलील अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन करदिया बताए गए हैं। इन अफराद को पाटन ज़िले के सिद्धपुर तालुका में खडियाल गांव से पकड़ा गया। इस महीने के शुरू में जैश ए मोहम्मद के 8 मुबैना कारिंदों से पूछताछ के दौरान इन 5 मुलजिमों के नाम सामने आए थे। इन 5ों को महसियाना ज़िले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट आरएम भाटिया के सामने पेश किया गया और 24 जुलाई तक एटीएस की तहवील में भेज दिया गया। सरकारी वकील पीआर दंतानी ने अदालत को बताया कि इनमें से एक मुलजिम ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने के काम आने वाला सामान और जैश ए मोहम्मद का लिटरेचर अभी बरामद नहीं किया गया है, इसीलिए हिरासत में लेकर मुलजिमों से पूछताछ करने की जरूरत है। गोवा हुकूमत ने कसीनों से मुतालिक जाब्तों में सख्ती करते हुए 21 बरस से कम उम्र के लोगों की कसीनों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला ने इस नई पाबंदी के नफाज के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में साहिल के नज़दीक कसीनों के जहाज़ों के लिए लाइसेंस की अदायगी के सिलसिले में भी जाब्ते सख्त कर दिए गए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत का नौजवानों के उमूर का महकमा आज से माई भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन का इनेकाद करेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस माह की 18 और 19 तारीख को 2 रोज़ा चिंतन शिविर होगा। वजारत ने कहा है कि एक के बाद एक 2 प्रोग्रामों का मकसद ज़मीनी सतह पर नौजवानों के राबतों को मुस्तहकम करना, इदारा जाति तालमेल को बढ़ाना और नौजवानों की क़्यादत में मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ईको निज़ाम तश्कील देना है। दोनों तकारीब में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा नितिन खड़से दीगर सीनियर ओहदेदारान के साथ शिरकत करेंगे। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के साथ अमन समझौता नाकाम हो जाने के तनाजुर में ईरान के खिलाफ लगातार 6ठी रात फौजी हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है, क्योंकि ईरान से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शल बहरी जहाज़ों को ख़तरा लाहिक है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान में अमरीका के हालिया हमलों में सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। केरलम में मलयालम दौर के कार्किडाकम महीने को रामायण महीने के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज आज से हो रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद रूहानी कुव्वत और जहनी सुकून के लिए रामायण की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कार्किडाकम का आज पहला दिन है और इसके साथ ही पूरी रियासत में कई घरों और मंदिरों में रामायण का पाठ रोजाना का मामूल बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान और आला ओहदेदारान के साथ आला सतह की मीटिंग की सदारत की और पवित्र श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर में चढ़ावे और अतियात वगैरह के बंदोबस्त के निजाम का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत, जवाबदेही और कामकाज से मुतालिक तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर एक जामे जायजा पेश किया गया। मर्दों के क्रिकेट में कल रात कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे एक रोज़ा बैनुल अक्वामी मैच में
मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की क़्यादत में भारतीय टीम 44 ओवर्स में महज 233 रन ही बना पाई। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा

0: 66 रन बनाए जबकि विराट कोहली ने 65 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 99 रन स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब दोनों टीमें लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट मैदान पर इतवार के रोज इस सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच खेलेंगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार की रात को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सरहदी सड़क तंजीम BRO की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से मुतालिक खबर को भी अखबारों में नुमाया तौर पर शाये किया गया है। रोजनामा इनकलाब ने इस दौरान दिए गए उनके इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जदीद हथियारों के बावजूद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बरकरार है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें फौजी मुहिमात और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात ATS ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा कर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
5: इसलिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
4: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
5: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें।
6: संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
7: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।

आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच होगा ट्रेन का परिचालन। एनटीए ने नीट पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी किया। नालंदा के आयुष भलोटिया को देश भर में चौथा स्थान। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, केवल अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है। और कमला बलान नदी में उफान के कारण दरभंगा जिले के घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को पहले हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। श्री मोदी हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जिंद।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार के नवादा के वारिसलीगंज निवासी आयुष भलोटिया को देश भर में चौथा स्थान हासिल हुआ है। वहीं रिया रंजन छठे स्थान पर रहीं। दानापुर के रविकांत ने 55वीं और आदित्य कुमार ने 73वीं रैंक हासिल की है। बिहार से लगभग 60% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे की एकल पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार किसी जमाबंदी से असंतुष्ट है तो उसे सक्षम दीवानी न्यायालय में स्वामित्व संबंधी वाद दायर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिहार सरकार के समय पूर्व रिहाई के फैसले को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने चुनौती दी है। न्यायालय ने ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या को गंभीर अपराध बताते हुए इस पर चिंता व्यक्त की। आनंद मोहन वर्ष 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उनकी मौत की सजा को पहले पटना उच्च न्यायालय ने उम्र कैद में बदला था, जिस पर वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा। एक वीडियो जारी कर श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता

0: की उपेक्षा की जा रही है।
1: इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेंट पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 10 हैंडल्स को बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा है। इनमें राजद का एक्स हैंडल भी शामिल है। साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई ने एक्स के माध्यम से इन हैंडल्स को 72 घंटे के अंदर विवादित कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 19 जुलाई को राज्य के 540 मॉडल विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इन विद्यालयों का नाम सरस्वती विद्यानिकेतन रखा गया है। उद्घाटन की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और मॉडल विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि क्रॉसवर्ड को स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। श्री हसनैन पटना में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में आयोजित नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रॉसवर्ड तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के रघुनाथ नगर गांव में बोरवेल में फंसे 3 वर्षीय बच्चे पीयूष कुमार को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम खेलने के दौरान पीयूष कुमार बोरवेल में गिरने के बाद लगभग 35 फीट की गहराई पर फंस गया था। घटना की सूचना के बाद जिला प्रशासन की ओर से तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद पीयूष को आज तड़के 3 बजे पोर्टबेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज बांका और पश्चिम चंपारण जिले में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कई जिलों में मेघ गर्जन और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: दिनांक 17 जुलाई, राज्य के बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: विभाग ने कल जहानाबाद, नालंदा और पटना में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों में पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में सबसे अधिक 154.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के भेंटोरा गांव में एक पशुपालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के ढारिया गांव में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत

0: हो गयी। नेपाल में भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान समेत उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कमला बलान नदी में आई बाढ़ के कारण दरभंगा जिले के घनश्यामपुर और कुशेश्वरस्थान प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी प्रवेश कर गया है। एक रिपोर्ट।
1: कमला बलान नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर, गिदराही, नपटोलिया, कनकी मुसहरी, बैजनाथपुर, गिद्धा, भरसाहा, कैथाही समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे इन पंचायतों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। वहीं कई विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुस जाने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। लोग सरकारी और निजी नावों के सहारे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आवाजाही कर रहे हैं। इधर प्रशासन तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
0: पश्चिम चंपारण जिले में भी गंडक और मसान समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटबंधों पर भारी दबाव बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
2: नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पश्चिम चंपारण जिले में गंडक समेत विभिन्न नदियों में भारी उफान है। मसान समेत कई पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। रामनगर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 1,34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार।
0: हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि भीमनगर कोसी बराज पर नदी के जलस्तर में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इंग्लैंड ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 45वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। विशेष निगरानी इकाई ने पूर्णिया जिले के पैसा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार चौधरी और उनके निजी सहायक सतीश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों को शिकायतकर्ता से एक विपत्र के भुगतान के एवज में 40,000 रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पंचायती राज विभाग ने सीतामढ़ी जिला परिषद अध्यक्ष अदिति कुमारी को पदच्युत करने की अनुशंसा खारिज कर दी है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर से जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की टीम ने हत्या के एक मामले में वांछित इनामी अपराधी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर में अपराधियों ने एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पुराने विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। सारण जिले के दिखवारा में पुलिस ने एक युवक को 55 डेबिट कार्ड और 3 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस बरामद कार्डों के स्रोत और उनके संभावित दुरुपयोग की जांच कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, डिजिटल शिक्षा से समरेगा बिहार का भविष्य, सीएम ने लाइव क्लास का किया शुभारंभ। हिंदुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, परिसीमन में 6,000 से 8,000 की आबादी वाली पंचायतें यथावत रहेंगी। दैनिक भास्कर इसी खबर पर लिखता है, चुनाव 1 साल टला, अक्टूबर नवंबर में नहीं, अब अगले साल जुलाई अगस्त में होंगे पंचायत चुनाव। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा लागू न करें, छात्रों का तनाव बढ़ेगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पूरी रथ यात्रा में भगदड़, 1 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। आज अखबार लिखता है, इसरो में 100 वैज्ञानिकों के इस्तीफे से हड़कंप। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच होगा ट्रेन का परिचालन। एनटीए ने नीट पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी किया। नालंदा के आयुष भलोटिया को देश भर में 4th स्थान। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा

होगा, केवल अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है। और कमला बलान नदी में उफान के कारण दरभंगा जिले में के घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
2: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
3: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
2: आज ही कीन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
4: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
5: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
6: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
5: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
6: 1950?
5: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
7: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
5: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
6: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
5: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
8: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
9: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
10: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
11: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया था, बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। हवाओं से होकर

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: आवाज सुनी जाएगी और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। तो आइए सामीन, अब पेश खिदमत है नातिया कलाम, पेश कर रहे हैं फर्रुख अहमद।
1: मोहतरम सामीन, नाते रसूल पाक का मतला मुलाहजा फरमाएं।

खुदा से सजा रहे हैं हुजूर, दिलों को याद दे खुदा से।

गुल ये बज़्म खैर में तशरीफ ला रहे हैं हुज़ूर, ये बज़्म खैर में तशरीफ ला

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। पेश है फिल्म संगीत।

दूज का चांद। इस फिल्म का यह गाना अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे के आवाज में। शाहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था रोशन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म घराना में। गीत के बोल शकील बदायूनी के थे, संगीत निर्देशन रवि का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: हम दोनों, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शाहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था जयदेव ने। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: दाग फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में। शायर लुधियानवी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मेरे हमदम मेरे दोस्त, विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था एसटी बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म दो रास्ते में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मशाल में। जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

सपने साजन के। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल को। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

पति पत्नी और तवायफ। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और सलमा आगा की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर को आप सुन रहे थे फिल्म कुछ कुछ होता है में। समीर के लिखे गाने को संगीत दिया था जतिन ललित ने।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म कच्चे धागे में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। कार्यक्रमों को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको सुनवा रहे हैं अलाउद्दीन खान का सरोद वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अलाउद्दीन खान का सर्वोद्वादन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
0: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोडायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंबा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया। इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
3: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ

0: समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये

0: जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
0: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
0: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
0: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
0: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
0: जी।
1: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
0: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
0: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
0: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
1: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
0: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
0: अच्छा।

0: ये बात है।
1: बिल्कुल, एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
1: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
0: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
1: भला वो क्या?
0: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
1: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुईं।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। हाँ, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था।

0: अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगमंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नई फिल्मों के कुछ गाने। शुरुआत हम करते हैं फिल्म वनवास के इस गीत से, जिसे आवाजें दी है विशाल मिश्रा और परक मुच्छाल ने। मिथुन का लिखा ये गीत है, क्षमा करेंगे, सैयद कादरी का लिखा ये गीत है, संगीत निर्देशन मिथुन का है, फिल्म का नाम है वनवास।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा था। अब समय हो चला है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार का। आइए सुनते हैं नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सखी श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज शुक्रवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने भूले बिसरे फिल्मी गीतों का। और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। विषय है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसे हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, समान अवसर और सुरक्षित जीवन का आधार है। न्याय का अर्थ केवल अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाना, भेदभाव से मुक्त समाज बनाना और कानून के समक्ष सभी को एक समान मानना भी है। जब समाज में न्याय होता है, तब विश्वास बढ़ता है, शांति स्थापित होती है और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। न्याय की शुरुआत हमारे घर और परिवार दोनों से होती है। यदि परिवार में बेटी और बेटे को समान शिक्षा, समान सम्मान और समान अवसर दिए जाएं, तो समाज में समानता और न्याय की मजबूत नींव रखी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो चुप रहना समाधान नहीं है। उचित माध्यम से अपनी बात रखना, कानूनी सहायता लेना और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना जागरूक नागरिक की पहचान है। न्याय तभी मजबूत होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करेगा। बहनों, न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे निर्णय में भी दिखाई देना चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और समान अवसर पाएगा, तभी एक सशक्त, सुरक्षित और न्यायपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होगा। तो चलिए, बातें आगे और भी होगी, इन्हीं विचारों के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

गाइड के इस खूबसूरत से गीत के बाद बहनों आइए अब आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। वार्ताकार है शिखा गुप्ता।

अपने करियर में तरक्की करना बेहतरीन अनुभव होता है, इससे आर्थिक लाभ भी होता है और इसके साथ साथ रुतबा रुआब भी बढ़ता है। इसके साथ कामकाज से मिलने वाली संतुष्टि भी बढ़ती है। तो चलिए बात करते हैं इसी पर कि कैसे आप पेशेवर शिक्षण से या स्किल डेवलपमेंट कोर्स से अपने करियर की गति को बढ़ा सकती हैं। तो आज हमारे साथ हैं शिखा गुप्ता जी, और उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं होती हैं वो अपने जीवन को बदल सकती हैं कुछ थोड़ा सा बदलाव करके, जिसमें कि वो घरेलू काम भी कर सकती हैं और घरेलू काम के साथ साथ अगर वो कुछ रोज़गार के साधन ढूंढें और अपने अंदर ये आत्मविश्वास लाएं कि वो घर के साथ साथ बाहर का भी काम बखूबी कर लेंगी, तो इसमें कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं कि महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। और महिला ही वो हैं जो आज तक हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो, कहीं भी घर या दफ्तर, कहीं भी अपना परचम फहराती आ रही है। तो आइए बात करते हैं शिखा जी से। नमस्कार शिखा जी। नमस्कार शिखा जी, आज आप हमारी श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो घर का संचालन करते करते साथ में अपने को थोड़े से रोज़गार की तरफ भी मोड़ सकती हैं और उसके लिए

0: क्या कोर्स करना होगा और किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगी जिससे महिलाएं भी अपने करियर के बारे में सोचें। महिलाएं अपने करियर को गति दे सकती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं, अपने शौक को पूरा कर सकती हैं। तो कुछ योजनाएं हैं जिनसे जुड़कर पेशेवर शिक्षा के तहत महिलाओं के करियर में मदद मिल सकती है, तो मैं आपसे चर्चा करूंगी, जिसमें कि जैसा कि आप भी जानती हैं आजकल कौशल विकास योजना है हमारे पास, और इसमें क्या है कि ये पेशेवर शिक्षा महिला को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करती है, जैसे कि कम्युनिकेशन में, लीडरशिप में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऐसे बहुत सारे कौशल हैं जिसमें ये प्रशिक्षण प्रदान करती है, तो इससे जुड़कर भी महिलाएं लाभ उठा सकती हैं। पेशेवर शिक्षा महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में करियर की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। पेशेवर शिक्षा से महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास पैदा होता है और वो अपनी क्षमताओं पर भी विश्वास करने लगती हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेवर शिक्षा महिलाओं को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। और भी कुछ विकल्प हैं तो उसके बारे में आप हमें बताएं। जी, इसके अनेक विकल्प हैं, जैसे इसके डिग्री कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे कोर्स चल चुके हैं, वर्कशॉप है, सेमिनार है, जिन्हें अटेंड करके महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के संसाधन को ढूंढ सकती हैं। ये जो सारे कोर्स मैंने आपको बताए, इसे करने के बाद बड़ी आसानी से आईटी के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंस के जैसे क्षेत्रों में रोजगार मिल जाता है। और ऐसी जो पेशेवर शिक्षा होती हैं, इसमें रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, जो एक बेहतरीन करियर के निर्माण में सहायक होती है। शिखा जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप करियर पे थोड़ा सा ध्यान देती हैं तो आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं घर के कार्य में इतना डूब जाती हैं कि अपने बारे में सोचना ही छोड़ देती हैं और सोचती हैं कि चलो अब जिंदगी है, कट रही है। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बढ़ाई, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो साथ ही हमारे पास आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होंगे और आर्थिक मजबूती भी महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक होती है, ताकि उन्हें कभी अपने लिए, अपने निजी कार्यों के लिए या फिर घर के ही काम में मदद करने के लिए पैसों की डिमांड किसी से करनी नहीं पड़ती है। तो शुक्रिया शिखा गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और महिलाएँ इससे लाभान्वित होंगी। धन्यवाद।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का। 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

मैनो एक वक्त था जब न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, लेकिन आज महिलाएं न्यायाधीश, अधिवक्ता, विधि शिक्षिका, लोक अभियोजक, कानूनी सलाहकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही हैं। वे अपनी प्रतिभा और संवेदनशील दृष्टिकोण से न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना रही हैं। तो चलिए, हमारी चर्चा का अगला विषय भी यही है, न्याय के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। न्याय के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति केवल पदों तक ही सीमित नहीं है, उनकी भागीदारी से समाज के कई संवेदनशील मुद्दों जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा, बाल अधिकार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर सम्मान और बच्चों के संरक्षण पर अधिक बल, संवेदनशीलता और गंभीरता से विचार किया जाता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि अनेक महिलाओं ने न्याय और मानव अधिकारों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आज देश की अनेक महिलाएं विधि व्यवस्था के क्षेत्र में मुकाम हासिल करके नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ये भी आवश्यक है कि सामाजिक तौर पर प्रत्येक महिला अपने संवैधानिक अधिकारों और कानूनी संरक्षण के बारे में जागरूक हो। जब महिलाएं अपने अधिकारों और कानून के बारे में जानती हैं, तभी वो अपने साथ होने वाले अन्याय और साहसपूर्ण इन सभी चीजों का सामना कर सकती हैं। परिवार और समाज का भी दायित्व है कि वो महिलाओं को सम्मान, समान अवसर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करे, ताकि वे बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को साकार कर सके। तो चलिए बहनों, ये बात हम सभी पर लागू होती है और हम सभी को रोजमर्रा में भी और घर से लेकर बाहर दफ्तर तक अपने अधिकारों और न्याय संबंधी अधिकारों के विषय में जागरूक होना चाहिए। तो चलिए, बातें आगे और भी होंगी, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

बहनों, वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। गर्मी अपने प्रचंड रूप में है, ऐसे में खुद का ख्याल रखें और इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। गर्मी के साथ साथ आजकल बारिश भी हो रही है, ऐसे में मौसम बहुत बदल गया है, संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और थोड़ी सी अगर आप सावधानी में कमी करते हैं तो ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है, सेहत पे इसका सीधा सा असर पड़ता है। तो इसके लिए बहनों अपने खान पान का जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि खान पान का ही असर सेहत पे पड़ता है। आप हमेशा हाथ धोकर खाना खाएं, ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन से बचें। इस मौसम में हमेशा मसालेदार और चटकारे भोजन, चाट और इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन बचाव करें, कोशिश करें कि जहां तक हो सके इन सब चीज़ों से दूरी बना करके रखें। आप मौसमी फल का सेवन करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब भी बाहर निकलें तो छाते का प्रयोग करें, कोशिश करें कि जितनी ज़रूरत है उतना ही घर से बाहर रहें। कपड़ा हमेशा सूती पहने और चेहरे को ढक कर रखें, इससे धूप से बचाव होगा। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी खूब पिएं। बुजुर्गों को भी बाहर खास करके दोपहर में ना जाने दें, और अगर बहुत ज़रूरी है तो आप साथ में जाएं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। इसके साथ ही धूप से जब भी घर में आए तो तुरंत आकर ठंडा पानी ना पिएं, एसी में ना बैठें, और कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, उन सभी बातों का आप ध्यान रखें। तो बहनों, अगर आप भी चाहें तो अपने सुझाव हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, चलते चलते एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: इतने खूबसूरत से लम्हों, खूबसूरत सी यादों के साथ दीजिए विदा। श्वेता को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
3: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
2: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और

अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आज दूसरी सभा के कार्यक्रमों में रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में आप फोन पर किए गए फरमाइश को सुनते हैं। फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होता है। 9:30 से सुनिएगा साहित्य की, सूत्रधार होंगे

जो दूसरी सभा के कार्यक्रमों में रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में आप फोन पर किए गए फरमाइश को सुनते हैं। फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होता है। 9:30 से सुनिएगा साहित्य की, सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा। समाचारों की श्रृंखला में हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर उर्दू खबरें, 9 बजे न्यूज एट 9 और 8:45 से समाचार संध्या। सिंगरहार ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 8:15 से। 7:52 से फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे। जिले की हलचल का समय होगा 7:47। पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:30। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रमों में हम आपको सुनवाएंगे खेती गृहस्थी, चर्चा का विषय होगा पशुओं का टीकाकरण आवश्यक, समय होगा 7 बजे। 6:30 से आप सुनेंगे गांव घर के अंतर्गत आज नन्ना मुन्ना रहे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये है आज की चर्चा का विषय। 6:15 से विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे। 6:10 समय होगा हफ्तावार जायजा का। 5:40 पर फिल्म संगीत हम आप तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुछ नए फिल्मों के गाने। 5 बजे दूसरी सभा का आरंभ होगा कार्यक्रम तरुण कुसुम के साथ। ये जानकारियां थी दूसरी सभा के कार्यक्रमों की। अब एक नजर डालें आज के पहली सभा के कार्यक्रमों की। इस सभा के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे 2:30 से फिल्म संगीत। दोपहर समाचार का समय होगा 2:15। रोजगार सूचना हम आपको सुनाएंगे 2:10 से। 2:05 पर समय होगा इलाकाई खबरों का और प्रादेशिक समाचार 2 बजे से प्रसारित किए जाएंगे। पर आज समय होगा आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

बतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। अभी ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था फूल बने अंगारे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

दोस्तों, कैसे मिजाज आपके हैं फरमाइए। जी हाँ, ये फरमाइश हम लेकर आते ही हैं आपके मिजाज के हिसाब से। आज तो आपका मिजाज हमें पता है क्योंकि आपके ढेर सारे पत्र हमारे पास मौजूद हैं। इन्हीं पत्रों के आधार पर हम आपको सुनवाएंगे आज के इस कार्यक्रम में कुछ गाने, और आपके नाम को भी आपके रेडियो सेट तक हम पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं इस सफर को, इस सिलसिले को। स्वीकार करें रविंद्र का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ रविंद्र मिश्रा। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं इन खतों से जिन्हें भेजा है आप सबों ने। वार्ड नंबर 5 भगवतीपुर पंचायत से राहुल कुमार, रोशन शाह, ज्योति कुमारी, साक्षी कुमारी, विनोद शाह अकेला, मीना शाह, लक्ष्मी कुमारी, मुस्कान कुमारी, बेबी देवी, ज्योति देवी, संतोष शाह, रेणु देवी, अरुण प्रसाद निराला, प्रिंस कुमार, लाल शाह दीवाना, आदित्य कुमार। अगला पत्र है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालवाड़ा राजस्थान से। ये पत्र है हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागड़ी का। एक और पत्र है जो आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से। लिखने वाले श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, ये बलिया से लिखते हैं। साथ ही दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय ने भी पत्र भेजा है। और शेरपुर काला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने हमें पत्र भेजा है। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से इस गीत को सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपके फरमाइश भरे गीत आपके पत्रों के माध्यम से। अगला पत्र हमने लिया है शुभंकरपुर दरभंगा बिहार से। मिंटू जी, रंजना जी, राजेश जी, चंचल जी, सालू, साक्षी, अनिकेत, अनमोल बाबू, मिष्टी और मौली का ये पत्र है। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। लिखने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमेरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, कोकिल बारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से ये पत्र आया है। मोहम्मद फैजल शेख, नुजहत जहां नाज का। कांति निकेतन राजनगर से लिखते हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता। एक और पत्र है हमारे पास कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से। मोहम्मद ईसा, सबीना नाज, मोहम्मद इरफान आजाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफ्ताब, सगुप्ता प्रवीण, साहिन प्रवीण, नेमत प्रवीण, रौनक प्रवीण, सुमैया फातिमा, सना आफरीन, सादिया नूर, नवासा आरिस बाबू, भाई जगनारायण मुखिया तथा खुशी। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म आईना का ये गीत। युगलस्वर है ज्वाली मुखर्जी और लता मंगेशकर का। गीत रचना है समीर की, संगीत रचना दिलीप सेन, समीर सेन की। फिल्म का नाम एक बार हम फिर से बता दें आपको, फिल्म का नाम है आईना।
1: एक बात बोलूं? आपने एक दिन कहा था कि जब मैं आपको एक दोस्त से कुछ ज्यादा समझने लगूं तो आपकी तरफ हाथ बढ़ा दूं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आपको सुनवाते हैं वो गाने जिन्हें आप भेजते हैं हमारे पास पत्रों के माध्यम से। अगला पत्र है हमारे पास नाहरमन टोला से। कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान ने ये पत्र हमें भेजा है। साथ ही साथ एक पत्र आया है झंझारपुर लंगड़ा चौक से। हरिराम पासवान, जयशंकर पासवान, काजल कुमारी और रानी कुमारी ने ये पत्र भेजा है। एक पत्र है जतुका किशनपुर से। आलम दिलकश, सवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज और लाली साफी। आप सबों की पसंद है फिल्म आँखें का ये गीत, जिसे संगीत से सजाया है रवि ने, शब्द से सवा

हमारा है साहिड लुधियानवी ने और अपने सुर अपने स्वर से इस गीत को जीवंत किया लता मंगेशकर ने। आंखें फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज़, साहिर की रचना और रवि का संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

मनीष कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला का। ये फरमाइश है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर का। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म आजा मेरी जान का ये गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र की। नक्सलायलपुरी का लिखा ये गीत है, संगीत दिया है इस गीत के लिए अमर उत्पल ने।

दोस्तों, ये पत्र हमारे पास है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा नया नगर सुपौल से, श्वेता रंजन, पप्पू जी

दोस्तों, आपके कुछ पत्र हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिसमें आप ये लिखते हैं कि अपनी पसंद का कोई गीत सुना दें। ऐसे ही कुछ पत्र अभी हमारे हाथ में हैं जिसमें आपने लिखा कि अपने पसंद का कोई गीत सुना दें। आज हम अपनी पसंद का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि ये गीत आप सबों को भी पसंद आएगा। फिल्म का नाम है आपके साथ, लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं इसके संगीत निर्देशक। गाने का बोल है जिंद ले गया वो दिल का जानी, और इस गीत को पसंद करने के लिए हमें पत्र भेजा है आप सबों ने। रामपट्टी गौस नगर से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, मनोज कुमार सिंह, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोड़वा से भाई कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोलकी सकरा से जयंत कुमार बैरागी, नरहन एस्टेट फुटानी चौक से भाई फटफटिया झा, फूलेश्वरी देवी, फूल कुमारी, फोकली झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, टावर चौक आशापुर से प्यारेलाल मनोहर, अमरलाल मनोहर, दुलारेलाल मनोहर, सुंदरलाल मनोहर, प्रेमलाल मनोहर। सुनिए हमारी पसंद का ये गीत जिसे आप सबों के पत्र के साथ हम शामिल कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। फिल्म का नाम है आपके साथ और गायन स्वर है लता मंगेशकर का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपने फरमाइश के गीत अपने पत्रों के माध्यम से। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं या किसी अपने को सुनाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004 यानी 8460009। ये हमारा पिन कोड

है आकाशवाणी दरभंगा द्वारा केंद्र निदेशक, आप लिख सकते हैं और कार्यक्रम का नाम लिख देंगे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, फिर हमें लिखिए वो गाना जिसे आप सुनना चाहते हैं और उनके नाम जिन्हें आप सुनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक पत्र हमारे पास है बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से, लिखते हैं संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र, वंश प्रसाद और ये पत्र है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर विश्वा से, लिखने वाले हैं नारायण भाऊ विट्ठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोरेना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। एक पत्र है ये हमारे पास गांधी चौक रोपर पंजाब से, हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जैतेग बीरक और मिका बेरक। एक और पत्र हम शामिल करते हैं जिसे हमें भेजा है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। आप सबों की पसंद का एक गीत है फिल्म आस पास से, आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनिए आप सबों की पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है आसपास।

दोस्तों, ये कार्यक्रम है आपकी फरमाइश और ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं हर शुक्रवार को। अगले शुक्रवार को फिर हम उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के साथ, आपके पत्रों के साथ और आपकी फरमाइश के गीतों के साथ। आज के इस अंक से अपने दोस्त रविंद्र मिश्रा को दें अनुमति। नमस्कार।

0: अब हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई यह रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में यह शुरुआत पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। संसद के आगामी सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। बिहार सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सर्वम एआई भारत जीपीटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य को एआई आधारित प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिलाने में मदद करेगी। इस समझौते के तहत नागरिकों को हिंदी के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी भारतीय भाषाओं में एआई आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों को मौसम, फसल, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त हो सकेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया है कि एनडीए अपनी जीती हुई सीट फिर से जीतेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के अनेक भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी की संभावना जताई है। नेपाल में भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान समेत उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से योगापट्टी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। आज भी वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,21,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। बाढ़ से घिरे गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। किशनगंज पुलिस ने गीता देवी हत्याकांड में शामिल अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सरगना सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान हत्या में प्रयुक्त औजार भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब

0: आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन का इफ्तिताह रेलवे के शोबे में साफ और टिकाऊ ट्रांसपोर्टेशन को अपनाने की समत

0: पथ के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन का इफ्तिताह रेलवे के शोबे में साफ और टिकाऊ ट्रांसपोर्टेशन को अपनाने की समत में एक अहम कदम है। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और तैयार की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके फरोग दी गई है, जो बेहतर रेलवे इंजीनियरिंग में मुल्क की बढ़ती सलाहियतों को दिखाती है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने इसे तारीखी बताते हुए कहा कि साफ, महफूज और टिकाऊ ट्रांसपोर्टेशन निजाम की समत में ये आगाज पूरे मुल्क के लिए काबिल फख्र है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन इस माह की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सेशन के दौरान कई अहम निकात पर गौर खोज और उन्हें मंजूर करने का प्रोग्राम है। पार्लियामेंट का आइंदा सेशन से कबल हुकूमत ने 19 जुलाई को पार्लियामेंट में सभी सियासी जमातों के लीडरान के साथ मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के बेहतर तरीके से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सभी सियासी जमातों से तआवुन चाहेगी। रियासती हुकूमत ने मसनूई हिकमत पर मुहित सुशासन और डिजिटल खिदमात को मुस्तहकम करने की समत में एक अहम कदम उठाया है। रियासत के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तमाम AI भारत GPT के बीच एक मुआहदा पर दस्तखत किए गए हैं। वजीर आला सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी इत्तला देते हुए कहा कि बिहार डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी जिद्दत के शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पहल रियासत को AI पर मोहित इंतजामिया और डिजिटल इक्तसादी निजाम की समत में नई शनाख्त दिलाने में मुआविन होगी। इस समझौते के तहत शहरियों को हिंदी के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी हिंदुस्तानी जबानों में AI पर मोहित डिजिटल खिदमात दस्तयाब कराई जाएंगी। किसानों को मौसम, फसलें, मंडी भाव और सरकारी मंसूबों की मालूमात अपनी जबान में हासिल हो सकेगी। बांकीपुर असम्बली ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर जोर पकड़ चुकी है। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार अपने हामियों के साथ लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। जदयू के सीनियर रहनुमा और नायब वजीर आला बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया है कि NDA अपनी जीती हुई सीट फिर से जीतेगा। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, मशरकी और मगरबी चंपारण जिला के मुख्तलिफ खितों में हल्की सी से वस्त बारिश हुई है। महकमे ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जहानाबाद, नालंदा और पटना जिला में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी का भी इम्कान बताया है। नेपाल में शदीद बारिश के सबब गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान समेत शुमाली बिहार की कई नदियों की आबी सतह में लगातार इजाफा हो रहा है। इधर मगरबी चंपारण में गंडक नदी की आबी सतह बढ़ने से जोगा पट्टी ब्लॉक के कई गांव में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। आज भी वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,21,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। सैलाब से घिरे गाँव के लोग महफूज मकामात की तरफ रवाना हो रहे हैं। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतासर इलाकों में जरूरी इमदाद दस्तयाब कराने का मुतालबा किया है। किशनगंज पुलिस ने गीता देवी कत्ल मामले में मुलविस बैन रियासती चोर गिरोह के सरगना समेत 4 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान कत्ल में इस्तेमाल शुदा असलाह भी बरामद किया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक के कुल 1829 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14 जुलाई 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 है। आयु सीमा 21 साल से 40 साल के बीच है ऑफिशियल वेबसाइट यूपी एस एस

0: jkssb.gov.in है। JKSSB के कुल 130 पदों पर आवेदन शुरू किया गया है। आवेदन शुरू होने की तिथि 22 जून 2026 थी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 होगी। उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष है। विशेष जानकारी के लिए आप वेबसाइट jkssb.nic.in देखें। BOI कुल 779 पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन शुरू होने की तिथि थी 30 जून 2026। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026। न्यूनतम आयु सीमा है 25 साल, अधिकतम आयु सीमा 45 साल है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसके लिए bankofindia.bank.in। रेलवे RRB टेक्निकल एग्जामिनेशन 2026 के कुल 6,557 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन शुरू होने की तिथि थी 30 जून 2026। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। न्यूनतम आयु सीमा है 18 साल और अधिकतम आयु सीमा टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए 30 वर्ष और टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए 33 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप RRB के वेबसाइट को देख सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक, रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगें जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
4: जिंदगी कैसी है बहेली हाय।
5: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
2: अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचारों के लिए।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

0: पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का रखेंगे।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी

0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमरीकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म हमको दीवाना कर गए का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं अभिजीत और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

सिलसिला है प्यार का। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म नगीना से, मोहम्मद अजीज की ये आवाज है, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है नगीना।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ये सिलसिला है प्यार का। इस फिल्म का ये गीत है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें हैं। गीतकार हैं समीर, संगीतकार जतिन ललित।

सिलसिला है प्यार का। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं नीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, जोधपुर से बोल रहे हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैम बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे पैलेस देखिए, उम्मेद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मेद भवन बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th month का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयां छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। हर्षिता का भी और पुलकिता का भी। बहुत
1: दादा ने नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था।
0: हाँ जी,
1: तब सेकंड हुई है।
0: अच्छा,
1: तो पुलकिता रखेंगे
0: वही मतलब वही है, हर्ष उत्तरा पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं तो घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो डांस भी हो सकता है।
1: जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, आप जॉब करती हैं? अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में?
1: ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारे कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी बंद

0: अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को देखो इतना आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, वो साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं, लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से ये अच्छी चीज है, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए,
1: है
0: ना, हम जो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना।
1: बिल्कुल मैडम।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे क्या गाना सुना आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: थोड़ी देर के लिए,
1: बिल्कुल,
0: है ना, हम जो
1: करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना।
1: बिल्कुल मैडम जी।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे क्या गाना सुना है आपने, बहुत बढ़िया गाना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का।

0: क्या आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे, बस सब तक पहुंचा देगा।
1: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
0: बेटा मैं तो खाने में बिरयानी है चीजें खा लेती हूँ, बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
1: अच्छा अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
0: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है।
1: अरे वाह, तो सब लोग साथ में रहते हैं?
0: जी, मेरी जो शादी नहीं है, मेरी दीदी हाँ। की हो गई है।
1: अच्छा अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
0: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का।
1: अच्छा अच्छा, आपको बॉडी गार्ड का गाना सुनना?
0: कहानी है मुश्किल।
1: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं केकता शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप
1: जी।
0: तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहाँ आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं।
0: अरे वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना?
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है।
0: अच्छा,
1: सब दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सब

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया तो बहुत मजा आता है उसको। अच्छा। इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मन बुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती। अच्छा, और थोड़ी मन बुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी इसकी बर्थडे हुई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मैडम, उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नख पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
0: अच्छा, तो अच्छा लगता है उसे तैयार होना? अच्छा लगता है।
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा, 2 टाइम नहाना, खाना, तो जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी बात है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार करना सबसे पहले जरूरी होता है और बहुत अच्छी चीज है। वो सजती है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
1: क्या है कि मेरा एक लड़का है बड़ा और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है और अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका।
0: अच्छा अच्छा,
1: आजीवा रोड पे।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आपको बताइए। और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं। उसको तो क्या है कि वो गाना, रेडिया, वो अच्छा, सब बहुत पहले से सुनती रहती है। वो सलमान खान बहुत अच्छा लगता है, तो तेरे नाम का गीत सुनती है वो।
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाए।
0: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाते।
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह,
1: सकीना है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा, सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है, कश्मीर का पश्मीना एकदम नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी जी जी मैम
0: जी, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं अभी छोटे हैं।
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ, और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते ना, हम घर का काम खत्म करके बस ये करते हैं।
0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई ऊनी कपड़े?
1: शॉल बनाती हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहाँ तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब?
1: जी जी मैम, बहुत किस्में होती हैं पश्मीना की।
0: अच्छा अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: जी, दो अच्छा, तीन किस्म के बनाती
0: हैं। अच्छा, तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना
1: जी,
0: बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने, जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद कर सकें, तो बहुत अच्छी चीज है आप जो कर रही हैं। घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी मैं दिलवाले फिल्म है ना, उसका कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिलवाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: जी जी मैम।
0: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद खाटवी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है यहाँ का, मुर्शिदाबाद
0: हाँ
1: सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है। यहाँ का आम भी फेमस है, फेमस
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ
1: उसी
0: हाँ
1: में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलता है
0: हाँ
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं? आपको लिखने का शौक
1: हाँ,
0: है?
1: लिखती भी है। इस बार भी
0: अच्छा
1: हम भेजे,
0: अच्छा अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ अरे
1: और
0: वाह
1: मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओड़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं। उन लोग को हम दाना देते हैं, तीन
0: बहुत अच्छी बात है।
1: टाइम उस सबको दाना देते हैं
0: अच्छा,
1: हम।
0: तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

साथियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाए, डगर डगर पर वृक्ष लगाए।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही है आप हसीना मंसूरी? हाँ
1: जी जी।
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है? मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी जहाँ तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है, रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुनते हैं, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, अगर वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, कभी ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती है मैडम मैं अधिकतर तो ज्यादातर, और घर में काम भी, छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गहने पैक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?
1: हाँ इसमें रफो होता है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: सुनना अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको? आवाज से लग रहा है मुझे
1: गाना गाना अच्छा लगता ना मैडम, आके बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी जी, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम बड़ागांव जिला विनाश चंचल ढाकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको, मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, सलमान खान का।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरथी पोस्ट कर रही हूँ, जिला चंदौली से इमरती यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे, मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ। मैम रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सबकी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छी बात है, ये आपको सखी सहेली अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे, क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय
1: जी
0: के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह की गीत पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से बहुत, जो हमें कहीं से
0: हाँ,
1: खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना, और
1: जी
0: साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही, लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल
1: जी
0: संगीत
1: मैम
0: के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी, मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने अंदर की एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ना एकदम, ऐसा लगता है ना।
1: जी अच्छा लगता है।
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से।
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं, आपको क्या करना पसंद है?
1: मैं घर में भी रहती हूँ और

0: और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो जैसे कि पेंटिंग है ना, और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट।
1: अरे वाह, बहुत
0: तो
1: अच्छी
0: मुझे
1: बात है।
0: हाँ तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
1: कौन कौन सी तरीके का खाना बना लेती हैं आप?
0: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह ये
1: अरे
0: सब
1: वाह,
0: चीजें।
1: क्या बात कर रही हैं आप, इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
0: हाँ
1: अच्छी अच्छी
0: जी
1: चीजें
0: कहते
1: खिलाती
0: हैं
1: होंगी।
0: ना, हाँ जी कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना घर में, जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं
1: हाँ,
0: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
1: अरे वाह,
0: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
1: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत
0: हाँ
1: अच्छी
0: जी
1: बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए ताकि हम भी आए और आपने जो बताई हैं चीजें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके।
0: अरे
1: क्योंकि बहुत अच्छी
0: बिल्कुल।
1: चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: जी मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288।

0: और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले, और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: रहे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
2: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते हैं। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में

0: कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।
1: एक दो

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर

खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाकये को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विजू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी

0: विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और बिज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। बिज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी बिज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी मां और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। बिज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। बिज्जू के लिए ये सब कुछ समस्या परे था। आदतन कोई सवाल तो बिज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। बिज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए बिज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठ।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है।

ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया, और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हो तो ज्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी, और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की बिज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज़ पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है हमारी युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। बना रहेगा अब से लेकर 40 मिनट तक हमारा आपका साथ, यानी 5:40 तक हम और आप बने रहेंगे एक साथ। करेंगे हम बातें आपसे, साथ ही सुनेंगे लोकगीत, गज़लें और समय मिला तो गैर फिल्मी गाना भी आप तक पहुंचाएंगे। पहले आपसे कुछ बातें करें। देखिए दोस्तों, हम और आप मनुष्य हैं, जीव तो ढेर सारे हैं इस संसार में, जीवन तो पेड़ पौधों से लेकर पशु तक में है, लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि मनुष्य के पास जो सोचने, समझने और काम करने की शक्ति है वो किसी और प्राणी के पास नहीं, और यही कारण है कि हमने तमाम संसार के जितने भी जीव हैं या निर्जीव हैं सभी पर अपना राज कायम किया है। अपना राज कायम करने का मतलब सबको अधीनस्थ किया है,

अपने कंट्रोल में ले लिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है संसार की जो हमसे बाहर है, सब हमारे ही अंडर में आती है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं हम और आप। तो जीवन एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है जो हमें और आपको मिला है, तो इसको क्या करें, यूं ही इधर उधर के कामों में व्यर्थ बर्बाद कर दें या फिर अपनी कोई जीवन में पहचान बनाएं। आप देखेंगे कि हर दिन लाखों लोग संसार में जन्म लेते हैं और लाखों लोग मरते हैं, बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं होता है जिसके कारण उनको समाज याद रखे। तो हमें सोचना होगा कि जीवन में हम कैसे जिए ताकि लोग हमें याद रखें, हमारी पहचान बने। तो ये प्रश्न अगर हमारे या आपके मन में आ जाता है तो फिर हम उसको लेकर काम भी करेंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे आपसे कि जीवन में अपनी पहचान ज़रूर बनाएं। आपको एक उदाहरण देते हैं हम कि हमारे समय में भी ऐसा होता रहा है कि लोगों ने हेयर स्टाइल कटा लिया और हेयर मतलब बाल कटा लिया सर के, और उसके बाद क्या है तो ये फलां हीरो के स्टाइल का है, ये पैंट है तो फलां हीरो के स्टाइल की है, ये शर्ट है तो फलां ने फलां फिल्म में पहना था वो स्टाइल है। आपको बताएं, हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बता दें ऐसी नकल मैंने जीवन में कभी नहीं की। मेरा अपना स्टाइल रहा है दोस्तों, हमेशा ही मैं फिल्में देखकर या किसी के बाल को देख करके अपनाता नहीं हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। अपने कपड़े पहनने का अंदाज़ मैंने खुद तय किया है और मैं अपने अंदाज से कपड़ा पहनता हूँ, मैं कभी किसी की नकल नहीं करता। और मेरा किशोरावस्था से ये मानना था कि मैं ऐसा काम करूँ कि दूसरे लोग हमारी नकल करें, मैं किसी की नकल ना करूं। तो क्या ये चीज़ मेरे जैसा एक छोटे से गांव का किशोर सोच सकता है, तो अन्य किशोर और युवा क्यों नहीं सोच सकते? वो क्यों किसी के पीछे भागेंगे? उनकी एक अपनी पहचान हो सकती है, वो चाहें तो अपनी एक पहचान बना लें। आप देखेंगे UPSC के कई शिक्षक हैं जो UPSC की तैयारी कराते हैं, उसमें एक साहब हैं जो हमेशा गमछा डाले रहते हैं दोनों कंधे पे, वो सामने लटकता रहता है गमछा, उनकी पहचान है वो गमछा। कहाँ वो शर्माते हैं, वो तो UPSC के की तैयारी करा रहे हैं वो शिक्षक, तो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उन्होंने गमछा रख करके अपनी आइडेंटिटी दी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक गमछा रख लें आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में ऐसा उत्कृष्ट काम करें आप ताकि आपकी पहचान बने, लोग आपको कहें कि हाँ ये व्यक्ति है तो ये काम आसानी से कर लेगा, दूसरे पे हमको भरोसा नहीं है, ये काम ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कर सकता है। ये हुई आपकी पहचान। कोई अगर आपके बारे में ये बोलते हैं कि ये आदमी ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, इसका मतलब वो आपकी पहचान हुई। ढेरों लोग एक तरह के काम कर लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं संसार में जो अनेक तरह के काम करते हैं, तो जो अनेक तरह के काम कर लेते हैं उनकी पूछ होती है, क्योंकि वो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो ये एक पहचान का तरीका हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ विशेष गुणों के साथ इस संसार में भेजा है। जीवन का उद्देश्य केवल जन्म लेना, पढ़ना, नौकरी करना और जीवन बिताकर समाप्त कर देना ये नहीं है, बल्कि ऐसा कार्य करना जिससे हमारी एक अलग और सम्मानजनक पहचान हो जाए। दोस्तों धन और पद से अधिक महत्वपूर्ण हमारा चरित्र होता है, ईमानदारी होती है और कर्म होते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को अपनाया वही समाज में अपनी पहचान बना सके हैं। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और कल्पना चावला जैसे महान व्यक्तित्व साधारण परिस्थितियों से उठकर

अपनी मेहनत और लगन के बल पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए हैं ये लोग। इनकी पहचान इनके कर्मों से बनी, न कि केवल इनके नामों से। आज के युवाओं को चाहिए, जी हाँ दोस्तों, आज के युवाओं के सामने अनेक अवसर हैं। अगर वो चाहें तो सदुपयोग करें समय का और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अच्छी आदतें अपनाएं और निरंतर सीखते रहें, तो सफलता भी मिलेगी। और मिलेगी ही नहीं, सफलता उनके कदम चूमेगी, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। याद रखिए, जो लोग गिरकर भी उठ खड़े होते हैं वही इतिहास रचते हैं। एक बार अगर आप फेल होते हैं किसी मामले को लेकर तो घबराएं नहीं, फिर से करें और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। अपनी पहचान बनाने के लिए हमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, अनुशासन, आत्मविश्वास और सेवा भाव को अपनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो दोस्तों,

अच्छी आदतें अपनाएं और निरंतर सीखते रहें तो सफलता भी मिलेगी, और मिलेगी ही नहीं, सफलता उनके कदम चूमेगी, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। याद रखिए, जो लोग गिरकर भी उठ खड़े होते हैं वही इतिहास रचते हैं। एक बार अगर आप फेल होते हैं किसी मामले को लेकर तो घबराएं नहीं, फिर से करें और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। अपनी पहचान बनाने के लिए हमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, अनुशासन, आत्मविश्वास और सेवा भाव को अपनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो दोस्तों, पहचान जन्म से नहीं मिलती, बल्कि अपने कर्म, परिश्रम और अच्छे चरित्र से बनाई जाती है। इसलिए आइए आज प्रण करें कि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे, मेहनत करेंगे और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। तो ये थी हमारी आपसे आज की बात, और अब सुनते हैं गीत। ये देवी गीत है।

दोस्तों, आपने सुने क्रमशः कुंज बिहारी मिश्र, विभा सिन्हा और राधा मोहन के स्वर में लोकगीत। अब सुनते हैं गजलें।

दोस्तों आप सुन रहे थे चंदनदास के स्वर में निदा फाजली की यह गजल। इससे पहली गजल थी इब्राहिम अश्क की, जिसे गाया था भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह ने। अब जो गजल हम आप तक पहुंचा रहे हैं अहमद फराज की लिखी हुई है, आवाज गुलाम अली की।

0: प्रसारण को सुन रहे थे युवा दोस्त। प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं नई फिल्मों के गाने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का गाना। आवाजें थी मीत ब्रोस फिएट, जोनीता गांधी और जुबिन नौटियाल की। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म घूमर से। आवाजें दीपाक्षी खलिता और अल्तमश फरीदी की हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मीत ब्रोस, मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया के स्वर में सुनिए सत्य प्रेम की कथा का ये गाना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे दीपांजलि बी जोशी का गाया ये गाना, जिसे हमने लिया था फिल्म छिपकली से। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। 6 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
4: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
3: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया।

किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा, पेशकश होगी सना खान की। छह बजकर 15 मिनट पर लेकर आएंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। शाम 6:30 गांव घर कार्यक्रम के तहत होगा नन्हा मुन्ना राही, बच्चे सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर। 7 खेती गृहस्थी में किसान भाइयों के लिए चर्चा होगी पशुओं का टीकाकरण आवश्यक। साथ ही मौसम संबंधी जानकारी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी बातें होंगी।

7:52 पर, जी हाँ 7:52 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:15 पर मैथिली कार्यक्रम होगा सिंगर हार। 9:30 सुनिएगा कार्यक्रम साहित्य की, और 10:00 फरमाइशी फिल्मी गानों का

फोन इन कार्यक्रम लेकर आएंगे हेलो आकाशवाणी। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें।

0: लाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। पेश है हफ्तावार जायजा, पेशकश सना खान की है।
2: सामरीन आदाब, जायजे के अहम इशारे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासलाती व ऑनलाइन तालीमी प्रोग्रामों में दाखिले का आगाज़। शिवहर के DM के जनता दरबार में 30 शिकायतें पेश, फौरी कार्रवाई की हिदायत। मधुबनी के DPRO परिमल कुमार को पुरवकार अलविदाई, ज्योति रानी का इस्तकबाल। और अब तफसील। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के दरभंगा इलाकाई मरकज के इंचार्ज ने बताया कि यूनिवर्सिटी के मरकज बराए फासलाती व ऑनलाइन तालीम के तहत तालीमी साल 2026-27 के लिए मुख्तलिफ फासलाती व ऑनलाइन तालीमी प्रोग्रामों में दाखिले का अमल शुरू कर दिया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकर्ररा तारीखों के अंदर ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दाखिले के लिए MA, MBA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BEd समेत मुतादिद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्रामों में दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इंचार्ज ने कहा कि सर्टिफिकेट प्रोग्रामों में अहलियत उर्दू, बजरिया अंग्रेज़ी और फंक्शनल अंग्रेज़ी भी दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि दाखिला पोर्टल 8 जुलाई 2026 से फाल हो चुका है और उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और दाखिला पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। इस्नाद की जांच के बाद उम्मीदवारों को मुकर्ररा जाब्ते के मुताबिक फ़ीस अदा करनी होगी। इंचार्ज ने मजीद बताया कि MBA और BEd में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2026 मुकर्रर की गई है, जबकि दीगर तमाम प्रोग्रामों के लिए दरख्वास्तें 10 सितंबर 2026 तक जमा की जा सकती हैं। दाखिला फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026 रात 11:59 तक मुकर्रर की गई है। उन्होंने ख्वाहिशमंद तलबा से अपील की है कि वो बरवक्त दरख्वास्तें जमा करें और मज़ीद मालूमात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या दरभंगा इलाकाई मरकज़ से राब्ता करें। शिवहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिसेस प्रतिभा रानी ने जनता दरबार का एहतमाम किया। जिला मजिस्ट्रेट ने 30 लोगों से रूबरू होकर उनकी मसाइल की

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: प्रोमो से पहले आप सुन रहे थे गौतम मिश्र के स्वर में विद्यापति गीत। अब जो विद्यापति गीत आप सुनेंगे उसे गाया है सूर्य नारायण यादव ने।

नमस्कार। आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइ हरियाणाक जिंद रेलवे स्टेशन सँ सोनीपतक मध्य संचालित पहिल हाइड्रोजन ट्रेन के विदा कयलनि। हाइड्रोजन सँ संचालित एहि रेलगाड़ीक शुभारंभ रेलवेक क्षेत्र मे स्वच्छ आ टिकाऊ परिवहन के अपनेबाक दिस एक महत्वपूर्ण डेग अछि। भारत मे डिजाइन, इंजीनियरिंग आ एकीकृत कयल गेल ई रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीकक उपयोग सँ विकसित कयल गेल अछि, जे उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग मे देशक बढ़ैत क्षमता के प्रदर्शित करैत अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एकरा ऐतिहासिक जनौलनि जे स्वच्छ, सुरक्षित आ टिकाऊ परिवहन व्यवस्थाक लेल ई गर्वक विषय थिक। संसदक मानसून सत्र एहि मासक 20 तारीख सँ शुरू भऽ रहल अछि। 13 अगस्त धरि चलयवला एहि सत्र मे कतेको महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा आ ओकरा पारित करबाक कार्यक्रम निर्धारित अछि। संसदक आगामी सत्र सँ पहिने सरकार 19 जुलाई के संसद मे सभ राजनीतिक दलक नेताक संग बैसार आमंत्रित कयने अछि। बैसार मे सरकार संसदक दुनू सदन के सुचारू संचालन सुनिश्चित करबाक लेल सभ राजनीतिक दल सँ सहयोगक अपील करत। एम्हर बिहार विधानमंडलक 5 दिवसीय मानसून सत्र सेहो 20 जुलाई सँ शुरू होयत। प्रदेश मे आब नागरिक लोकनि के हिंदीक संग संग मैथिली, भोजपुरी आ मगही एहन भारतीय भाषा मे एआई आधारित डिजिटल सेवा उपलब्ध कराओल जायत। संगहि किसान लोकनि के मौसम, फसिल, मंडी भाव आ सरकारी योजनाक जनतब सेहो अपने भाषा मे प्राप्त भ सकत। बिहार सरकार एहि वास्ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन आ डिजिटल सेवा के मजबूत करबाक दिस एक महत्वपूर्ण डेग उठौलक अछि। प्रदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सर्वम एआई आ को रोबर केर मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोशल मीडिया पर ई जनतब दैत कहलनि जे बिहार डिजिटल गवर्नेंस आ तकनीकी नवाचारक क्षेत्र मे तेजी सँ आगा बढ़ि रहल अछि। मिथिलाक समग्र विकास आ दरभंगा जिला मे आधुनिक, सुरक्षित तथा उत्कृष्ट सड़क संपर्क लेल निर्माणाधीन परियोजना सभ के समयबद्ध क्रियान्वयन करबाक वास्ते आइ पटना मे उच्च स्तरीय बैसार भेल। बैसार मे दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर अधिकारी लोकनि संग विभिन्न निर्माणाधीन परियोजना के समय सँ पूरा करबाक वास्ते चर्चा कयलनि। सांसद कहलनि जे मिथिलाक विकास हेतु कतेको पहल कयल जा रहल अछि, जाहि मे दरभंगाक शहरक चारू दिस रिंग रोडक निर्माण समेत एनएच सँ जुड़ल आनो परियोजना सभ पर काज चलि रहल अछि। प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे मानसूनक सक्रियता सँ रुकि रुकि कऽ बरखा भऽ रहल अछि। पछिला

24 घंटा मे रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिलाक कतेको क्षेत्र मे आंशिक सँ मध्यम वर्षा भेल अछि। विभाग अगला 24 घंटा मे जहानाबाद, नालंदा आ पटना जिला मे तेज वर्षा के लऽ कऽ ऑरेंज अलर्ट जारी कयलक अछि। एहि क्रम मे 30 सँ 40 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ हवा सेहो चलत। मौसम विभाग अगला 4 दिन मे राज्यक कतेको स्थान पर अधिकतम तापमान मे 2 सँ 4 डिग्री सेल्सियस कमी हेबाक संभावना व्यक्त कयलक अछि। नेपाल मे भऽ रहल भारी वर्षाक कारणे गंडक, बागमती, कोसी आ कमला बलान समेत उत्तर बिहारक कतेको नदीक जलस्तर मे वृद्धि भऽ रहल अछि। पश्चिम चंपारण मे गंडक नदीक जलस्तर बढ़ला सँ योगापट्टी प्रखंडक कतेको गाम मे बाढ़िक संकट उत्पन्न भऽ गेल अछि। एम्हर दरभंगा जिलाक घनश्यामपुर आ कुशेश्वर स्थान प्रखंडक कतेको गाम बाढ़ि प्रभावित भऽ चुकल अछि। वाल्मीकि नगर गंडक बराज सँ आइयो 1,21,000 क्यूसेक पानि छोड़ल गेल। बाढ़ि सँ घेरायल गामक लोक सभ सुरक्षित स्थान दिस पलायन कऽ रहल छथि। स्थानीय लोक सभ जिला प्रशासन सँ प्रभावित क्षेत्र मे आवश्यक सहायता उपलब्ध करेबाक मांग कयलनि अछि। मुजफ्फरपुर जिलाक मुशहरी प्रखंडक रोहुआ हाई स्कूल लग नाला निर्माणक क्रम मे गैस पाइपलाइन मे रिसाव हेबाक कारणे 5 छात्र बेहोश भऽ गेलाह। एहि छात्र लोकनि के अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि। विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वामी सुधन जनौलनि जे छात्र सभक स्थिति एखन स्थिर अछि। किशनगंज में पुलिस गीता देवी हत्याकांड में सम्मिलित अंतर्राज्यीय चोर गिरोहक सरगना समेत 4 अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

0: ये आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर।

0: गाम घर सुननिहार सुधी श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हा के नमस्कार। श्रोता लोकन आई गाम घर के दलान पर हमारा संग देवू भाई, तो नमस्कार देवू भाई।
1: नमस्कार नमस्कार विजय भाई, संगे समस्त श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। विजय भाई आई शुक्र दिन है आ शुक्र दिन के हमारा लोकन सुने साप्ताहिक कार्यक्रम नन्हा मुन्हा राही ई ठाम ठाम जे धियापुता के मुख से हमारा लोकन किसले सुने संग संग जो छे किसले तो सुनबे करब, संग संग जो छे गीत नादक आनंद सेहो लेब, बाल गीत के आनंद सेहो लेब। मुदा ओहि सबसे पहिने किछु अपना में गपशप कर ली। विजय भाई आई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस सेहो अछि, तैं आई आई के जो दिन है बुझू जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और अई महत्वपूर्ण दिवस के प्रमुख बिंदु पर आई हमारा लोकन विशेष रूप से गपशप करब।
0: हाँ देखियो देव भाई, जे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है 17 जुलाई के दुनिया भर में मनायल जाते है, एकर उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली के बढ़ावा देनाय है आ मानवाधिकार के रक्षा केनाय आ मानवता के खिलाफ अपराध के दोष के जवाबदेह ठहरनाय है। एकर शुरुआत युगांडा के कंपाला में आयोजित रोम संबंधी रोम से विधि समीक्षा सम्मेलन में सदस्य देश के सभा औपचारिक रूप से 17 जुलाई के अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में घोषित केने छल।
1: ठीक है, एकर मुख्य उद्देश्य के जब

0: गप करी तो आई आई के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली का समर्थन कल जात आ अपराधी के हुनक काज में कल गेल जवाबदेही के ठहराबत आ विश्व शांति के बढ़ावा दिल जात अंतर्राष्ट्रीय न्याय ICJ के गप करी त देशक बीच भेल विवाद का सुझावत है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: विजय भाई, हमरा लोकन जे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर गप करे छलो हैं, जे ई न्याय दिवस के जे नीदरलैंड के हेंग में स्थित है, ई न्याय मुख्य रूप से राष्ट्रक मध्य विवाद पर जे फैसला सुनाबत है।
3: देखो देवू भाई, न्याय ओ नैतिक सिद्धांत है जे व्यक्ति आ संस्था के दोसर के अधिकारक सम्मान करैत निष्पक्ष रूप से काज करबाक लेल मार्ग दर्शन करैत अछि।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हाँ देवू भाई, देखियो जे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस एकटा वार्षिक आयोजन है जे वैश्विक न्याय आ जवाबदेही के बढ़ावा दैत अछि। एकर मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी, समाज में समानता आ न्याय के बढ़ावा दैत अछि। एहि दिवसक मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोक सबके न्याय के समर्थन में एकजुट केनाइ आ शांति के खतरा पहुंचाबे वाला अपराध के रोकना है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: देव भाई, जो सामाजिक न्याय एकटा एहन अवधारणा है जकरा तहत समाज में बिना कोनो भेदभाव के सब लोग सब के स्वास्थ्य, अवसर आ विशेषाधिकार धरि समान पहुँच आ निष्पक्षता सुनिश्चित कयल जाइत अछि।
0: ठीक है, कहलो है विजय भाई, जकर बहुत रास जो छे, जकर पहिल जो स्थापना के जो गप करी या पृष्ठभूमि के जो गप करी तो पहिल स्थापना के पृष्ठभूमि, दोसर है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय ICC, तेसर है अंतर्राष्ट्रीय न्याय CJ, ओना ही चारिम है अंतर्राष्ट्रीय न्याय CJ।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई

0: सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: देखू भाई, देखियो जे सामाजिक न्याय जे अछि ओकर किछु सिद्धांत सब अछि, जेना समानता आ निष्पक्षता। ई सिद्धांत एहि बात के सुनिश्चित करैत अछि कि समाज में सबके संग समान व्यवहार होय आ सबके आगा बढ़बाक समान अवसर मिले।
4: छैये न, सामाजिकता एकरे कहल जाइ छै जहन सबक साथ आ सबक विकास। जँ एहि तरहक भावना बना के रखब तऽ अवश्य अछि जे हमरा लोकनि जे छै आगू बढ़त रहब। तऽ विजय भाइ बेर रहत तऽ फेर आगू गपशप करब, मुदा धियापुता सेहो जे अपन बारीके अपन गीतनाथके सेहो इंतजार करैत हेता, तऽ किएक नहि हमरा हुनका लोकनिके एकटा बाल गीत सुना दियनि।
3: सुनल जाय।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: विजय भाई, संदेश से पहले हमारे लोग मृदुला मिश्र के स्वर में ये बाल गीत सुनल छलो, चंदा मामा आओ आओ, खूब निक लागल। आशा करे छियन जे नन्हा मुन्हा राय के धियापुता के सेहो निक लागल हेतन।
4: देख रहल देव भाई, ओहो बच्चा जाकर झूम रहल छल।
3: हाँ, गीते नाद एहन छल, बाल गीत एहन छल। तो आब हमारा लोग के जो छे फेन कार्यक्रम के आगा बढ़ाबी और सुने छी धियापुता के मुख्य ये श्री कमेश्वरी प्रिया पुअर होम नेत्रहीन विद्यालय दरभंगा, संकलन वाचन और निर्माण में सहयोग छत आशुतोष कुमार झा आ प्रस्तुति असद दाऊद के। तो आओ सुनी हमारा लोग
4: सुनल जा
5: धियापुता।

काकचेष्टा वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एहि श्लोक में बताओल गेल अछि जे एकटा विद्यार्थी में की गुण हेबाक चाही, जेना कि कौवा के भांति सब किछु बिजबाक चेष्टा, बगुला के भांति एकाग्रता और ध्यान, कुकुर के भांति पातरनिन कम भोजन ग्रहण केनाई और गृह के त्याग अर्थात घरक त्याग केनाई।

0: पांचो एकटा विद्यार्थी के लक्षण होइत अछि। जे विद्यार्थी एकर अनुसरण करै छथि ओ जिंदगी में अपन लक्ष्य के प्राप्ति करै छथि।
1: आजुक किसलय कार्यक्रम के संग हम आशुतोष कुमार झा एल सी श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय दरभंगा।
2: एतः बहुतो रास विद्यार्थी सब उपस्थित छथि और बहुत किछु सुनाबय चाहै छथि। तब एक बेर फेर किसलय के संग हम उपस्थित छी और गप करै छी हिनके सबके संग।
0: वो की नाम छी अहाँके?
3: अवतार कुमार।
0: अवतार कुमार, अहाँ कोन क्लास में पढ़े छी? नाइन्थ वर्ग में पढ़े छी। अहाँके सबसे नीक कोन विषय लागैत अछि?
3: हिंदी।
0: आजुक कार्यक्रम में अहाँ की सुनब?
3: कविता।
0: सुनाओ।
3: नव किरण का रस सजा है, कलि कसम से पद सजा है, वादन से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी।
0: वो की नाम छी अहाँके?
4: शुभम कुमार।
0: अहाँ कौन वर्ग में पढ़े छी?
4: पांचवे।
0: आज दिन अहाँ की सुनाए?
4: कविता।
0: सुनाओ।
4: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप विश्वास चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जुई चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुदे माला में एक हैं, कोयल की कूक प्यारी, पपी एक टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है, धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है।
0: वा की नाम छी अहाँके?
5: रौनक कुमार।
0: अहाँ कोन वर्ग में पढ़े छी?
5: छठी में।
0: आजुक दिन अहाँ की सुनाब?
5: कहानी।
0: सुनाओ।
5: कहानी का शीर्षक है कंजूस सेठ। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहा करता था। वह अपना एक रुपया तक खर्च करने में हकलाता था। एक दिन उनके मित्रों ने उन्हें अपना चित्र बनवाने के लिए मना लिया और कंजूस सेठ यह सोचने लगा कि कल चित्रकार मेरे पास चित्र लेके आएगा तो मैं उसे पैसा दूंगा। उसे तो एक रुपये खर्च करने में दिक्कत होती थी, तो फिर वो 100 स्वर्ण मुद्राएं कैसे दे देता। तो जब कल आया चित्रकार तो चित्र दिखाने वाला था, तभी सेठ अपने कमरे में गया और अपना भेष बदल कर आ गया। चित्रकार दिखाया अपना चित्र तो सेठ ने कहा कि ये चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, मैं तुम्हें इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं कैसे दे दूंगा। तो फिर चित्रकार निराश होकर चला गया। फिर वह कल आया तो सेठ भी अपना भेष बदलने में महारत हासिल किया था, तो फिर वह अपना भेष बदल कर आ गया। तो फिर चित्रकार ने अपने चित्र से सेठ का चेहरा मिलाया तो वह नहीं मिला। तो फिर चित्रकार के हाथ निराशा लग गया। तो फिर वह चित्रकार सोचने लगा, आज तक मुझसे ऐसी भूल नहीं हुई, पर आज ये कैसे हो रहा है। चित्रकार को सेठ की कारस्तानी के बारे में पता चल गया। तो फिर वह तेनाली राम के पास गया। कहा, तेनाली राम, कंजूस सेठ के पास मैं 2 चित्र बनाकर ले गया, फिर वह अपना भेष बदल लेता है और मुझे धोखा दे देता है, कहता है तेरे चित्र से मेरा भेष मिलता ही नहीं है। तो फिर तेनालीराम ने सेठ को सलाह दी कि आप एक दिन आईना लेकर जाइएगा। एक दिन वह क्या किया, तेनालीराम के सलाह के अनुसार आईना लेकर गया। तो कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सटीक चित्र बनाकर लाया हूँ, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तो वह कहा, दिखाओ। तो फिर वह आईने पे से कपड़ा हटा दिया। जब सेठ को पता चला कि यह आईना है तो फिर सेठ झुंझलाकर बोला कि अरे ये तो आईना है। तो चित्रकार ने कहा, सेठ जी, आईने से अच्छा आपका चित्र कोई नहीं बना सकता, इसलिए मेरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दें। तो फिर सेठ समझ गया कि यह तेनालीराम की ही सलाह है और वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर हवाले कर दिया। जब यह घटना तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सुनाया तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से आप बोल के सुनाया है। कोई कविता भी सुनाइएगा।
6: नहीं, लेकिन एक गाना सुना सकता
0: हूँ। सुनाइए।

परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम

का गीत हो। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ।

0: धन्यवाद,
1: बहुत सुंदर। वा की नाम छे आके?
2: देव कुमार।
1: आ कोन वर्ग में पढ़े छी?
2: 9th।
1: आजुक कार्यक्रम में आहा की सुनावा चाहे छी?
2: कविता
1: सुनाओ।
2: लब पे आते है दुआबन के तमन्ना मेरे जिंदगी सम के शरत हो खुदाया, मेरे दो दुनिया का हो मेरे दम से अंधरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से हुए मेरे वतन के जिना, जिस तरह से फूले सोते चमन के जिना, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारा, बिरिम के सम से हो मुझको मोहब्बत रहा। इतना ही काम गरीबों के हिमायत करना, दर्दमंदों से जाए फोर से जाए मोहब्बत करम में, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जुरा को बचाना मुझको, धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर। वकी नाम छे आके?
3: मनीष कुमार।
1: कौन वर्ग में पढ़े छे? हां
3: 3 में।
1: आज कार्यक्रम आ की सुनावा चाहे छे?
3: कविता
1: सुनाओ।
3: देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस्व ने प्रभु सरस्व ने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश की देश के भाषा, एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने।
1: वकी नाम छे यहाँ का?
4: रौनक कुमार।
1: आ कौन वर्ग में पढ़े छे?
4: 6ठी वर्ग में।
1: के सुनावा चाहे छे?
4: कविता
1: सुनाओ।
4: ये कविता का शीर्षक है अरमान। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, रुको मत आगे बढ़ने दो हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगी, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुनके पक्के सच्चे थे, हम जग में नाम कमाएंगे।
1: वो की नाम छे यहाँ का?
5: अमरजीत कुमार।
1: अमरजीत कुमार, आप कौन वर्ग में पढ़े छे?
5: 4।
1: की सुनावा चाहे छे?
5: कविता
1: सुनाओ।
5: सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पे मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आदर लगाती है, हे जग से जनहार प्रभु तव याद तुम्हारी आती है, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैं

0: उद्यानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, हे जगह से जनहार बनू तैयार तुम्हारी आती है।
1: की नाम छे अहाँ का?
2: गौरव कुमार।
1: कौन वर्ग में पढ़े छे?
2: सेवन।
1: की सुनावा चाहे छे?
2: कविता।
1: सुनाओ।
2: चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चरु भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माले उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक।
1: की नाम छे यहाँ का?
3: मेरा नाम आलोक कुमार सर।
1: आप कौन वर्ग में पढ़े छे?
3: कक्षा 3।
1: आज का कार्यक्रम अहाँ की सुनावा चाहे छे?
3: गाना
1: सुनाओ।
3: मेरे

0: हाँ विजय भाई, अखन हमरा लोकनि धियापुता के मुख सँ किसले सुन रहल छलहुँ। ई छल श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम नेत्रहीन विद्यालय दरभंगा सँ। संकलन वाचन आ निर्माण मे सहयोग छला आशुतोष कुमार झा, प्रस्तुति असद दाऊद के। एकरे संग कार्यक्रम के जे छै समेट क कार्यक्रम गाम घर के समेट के आब हमरा लोकनि खेती गृहस्थी दिस चलबाक चाही। तो कार्यक्रम खेती गृहस्थी में समस्त किसान श्रोता लोकन के स्वागत करे छियनि, नमस्कार करे छियनि। आब हमरा लोकन के जो छै विजय भाई, जे हमरा लोकन के तनी बाध बन दिस चलबाक चाही, जे देख रहल छी जे हमर जे किसान श्रोता लोकन छथि जे अपन खेती बाड़ी में लागल छथि, और देख रहल छी कि अखन तक पानि नहि भेल या, लेकिन जे हम जतबे अछि ओतबे पानि में जो छै बुझू जे हमर किसान श्रोता लोकन जे धन रोपनी की में लागल छथि। ओनाहियो कहबितो छै जे का बरखा जब कृषि सुखानी, जखन पानि हेबाक चाही से पानि तऽ नहि भऽ रहल है, मुदा हमर किसान श्रोता लोकन अपन जो छै खेती बाड़ी में लागल छथि। संग संग खेती बाड़ी में आई खेती बाड़ी आ पशु दोनों एक दूसर के पूरक कहल गेल अछि।
1: अवश्य के ना,
0: तो खेती बाड़ी तो हमर किसान श्रोता लोकन करबे करै छथि, संग संग पशुओं के मालो मवेशी के जो छै देख रेख केनाइ बहुत जरूरी होइत अछि। तऽ आइ हमरा लोकन गप करब खेती बाड़ी में विजय भाई, जे पशु के टीकाकरण कोना कराबी, टीकाकरण के की लाभ अछि, ऐसे अनेको तरह रोग व्याधि से कोना बचल जा सकत अछि, आइ एहि विषय पर हमरा लोकन विशेष रूप से गपशप करब। देखियौ विजय भाई, जे बहुत रास जो रोग व्याधि होइत अछि, जँ एकर समय पर जब देखरेख बा टीकाकरण नहि कराबै तऽ ओहिसँ होइ छै कि पशु के बहुत रास जो छै समस्या उत्पन्न भऽ जाइ छै। ताहि दुआरे हमरा लोकनि के समय समय पर जो छै पशु के जो छै टीकाकरण कराते रहबाक चाही। पशु के जो छै जँ टीकाकरण करबै ना तऽ अनेको तरहक रोग व्याधि सँ ओकरा बचाओल जा सकत अछि। आ टीकाकरण कखन कराबी, ओहि लेल जो छै पशु चिकित्सक सँ सलाह मशवरा लऽ कऽ तखन टीकाकरण हमरा लोकनि के करबाक चाही।
1: देखियौ नीक गप कहलियै देवू भाई। देखियौ देवू भाई, जे टीका लगबेलासँ पशुमे जानलेवा आ संक्रामक रोग जेना अहाँके गला घोटू भेल, खुरपक्का भेल, मुँहपक्का भेल इत्यादि सबके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होइत अछि। आ एकर आर्थिक नुकसानसँ जे सुरक्षा होइत अछि, स्वस्थ पशु नीक गुणवत्ता आ बेसी मात्रामे दूध या अन्न उत्पाद दैत अछि। तऽ बीमारीक इलाज करेलासँ नीक अछि कि सही समय पर ओकरा टीका लगबा कऽ पशुधन के सुरक्षित राखल जाए कि न। आ किछु पशु जनित बीमारी मनुख में सेहो फैल सकैत अछि, जेना रेबीज इत्यादि। तऽ टीकाकरणसँ एहन बीमारीक संक्रमण मनुख धरि पहुँचलासँ रुकैत अछि। आ पशुक पालन करयवला किसान सभक लेल गाय महीषक स्वास्थ्य पर एकर स्वास्थ्य बड़ महत्वपूर्ण होइत अछि। बुझलिए बबू भाई,
0: ठीक कहलहुँ हैं विजय भाई, जे हमरा लोकनि के जो छै जे समय पर जँ माल मवेशी के देखरेख करब, माल मवेशी के जो छै जे टीक संक्रामक रोग से बचाब, तऽ ओहिसँ पशुधन तऽ बचले रहैत अछि। संग संग जे हमर पशुपालक के जो धन अछि, माल मवेशी जो छै पशुपालक के लेल धन होइ छै, किएक तऽ माल जाल से

0: बहुत रास जे हमरा लोकन के दूध दही पनीर बहुत रास जे भेटत रहत अछि तऽ हमरा लोकन के कर्तव्य बनत अछि जे समय समय पर जे पशु के देखरेख करत रहू। जँ समय पर जे छै जेना खुर मुँह पक्का रोग के गप करी तऽ ई रोग वायरस जनित रोग होइत अछि। ई रोग भेला सँ शरीर में कंपन तेज बुखार यानी यानी 105 डिग्री धरि बुखार रहत अछि। खुर मुँह में घाव बेसी लार निकलनाय दूध उत्पादन में कमी शरीर का रुआ खार भ जाय छै ई सबटा लक्षण पशु में देखबा में आबैत अछि। जो ए तरहक लक्षण पशु में देखाय दे विजय भाई तब बचाव लेल जे छै हमरा लोकन के जो छै साल में दू बेर पहिल दिसंबर आ दोसर जुलाई मास में जे समय के उपयुक्त जुलाई मास में जो छै एकरा टीकाकरण जो छै दिला देबाक चाही। पशु चिकित्सक सलाह के अनुसार जो छै एकरा टीका दिलेबाक चाही। प्राथमिक उपचार के गप करी तो पशु के मुँह के फिटकिरी वा पोटास के घोल से आ पैरक खुर के फिनाइल के घोल से धो देबाक चाही। एकर उपरांत मुँह और जीभ के बोरोगैल्सरीन पेंट लगेबाक चाही आ खुर के बीच में तारपीन के तेल के व्यवहार करबाक चाही। जँ खुर के बीच में पिल्लू या कोनो तरह कीट व्याधि जखन रहत तो ओ बुझू जे तारपीन के तेल लगेला से बुझू जे ओ नष्ट भ जाय छै।
1: बड़ नीक गप कहले देव भाई देखियो जे पशु सब टीकाकरण एकटा एहन प्रक्रिया अछि जे गाय महीस के गंभीर बीमारी से बचेबा में मदद करैत अछि। पशु में विभिन्न प्रकारक बीमारी तेजी से पसरैत अछि जाहि में केवल दूध उत्पादन में गिरावट अबैत अछि। एहि समस्या से बचबाक लेल पशु के नियमित टीकाकरण बड़ बेसी आवश्यक छै आ टीकाकरणक जो मुख्य फायदा होइत अछि ओ बीमारी से बचाव जेना गाय महीस में जो होइ अहाँके पसरै वाला संक्रामक बीमारी जेना गला घोटू जे कहलहुँ हँ खुरपक्का मुँहपक्का आ थनैला रोग ई टीकाकरण के द्वारा जे अछि रोकल जा सकैत अछि। दूधक गुणवत्ता में सुधार स्वस्थ गाय महीस बेसी मात्रा में आ नीक गुणवत्ता के दूध दैत अछि तो पशुपालक आर्थिक नुकसान ऐसा कम होइत अछि। तो समय पर टीकाकरण करेला से पशु के इलाजक खर्च एकर मृत्यु दर में कमी अबैत अछि। बुझलियै
0: छै हे ना बहुत जँ हमरा लोकन समय पर जखन देखरेख करब पशु के जे छै पशुधन के जे हमरा लोकन बचाएब तो बुझू जे हमर सबक जे धन अछि ओ बचल रहत। संग संग ई तऽ अहाँके हम तारपीन तेल के गप करै छलहुँ हँ कि ओकरा खुर में जो छै दुइया में भिजा कऽ आ ओकरा जे छै खुर में किएक तऽ खुर में बहुत रास जो छै पिल्लू तिल्लू रहै छै आ जहन तारपीन के तेल के रुई में भिजा कऽ जखन ओकरा खुर में रख देबै ना तो जो भी कीट व्याधि होत या पिल्लू तिल्लू होत बुझू जे नष्ट भऽ जाइ छै। संग संग पशु चिकित्सक सलाह सँ एंटीबायोटिक्स के सुइया सेहो लगेबाक चाही। जो एहि तरह जे समय समय पर हमरा लोकनि जे पशुधन के देखरेख करब तो अवश्य अछि जे हमरा लोकनि के जो छै ई धन बचल रहत आ संग संग जे हमरा लोकनि के जे दूध के अहाँ गप करै छलहुँ हँ कि दूध के उत्पाद में तो जहन धन बचल रहत पशुधन बचल रहत तखने धन जे दूध के उत्पादन नीक हैत
1: आ जखने गप कहलहुँ
0: हँ जखने दूध उत्पादन नीक हैत जहन आमद आबे लगत तो बुझू जे मन जो छै ओर काल में कते खनहन भ जाय छै।
1: हाँ देव भाई देखियो जेकरा पर साफ सफाई के सेहो ध्यान रखबाक जरूरी है की तो टीका लगेलाक स्थान के साफ राखी आ गंदगी के नहीं जमा दी एकरा पौष्टिक आहार दी आ पशु के पौष्टिक आहार देला से की होइ छै ओकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़त अछि। तै पशुपालक लोकनक सुझाव जे पशुपालक लोकनि अपन क्षेत्र के पशु चिकित्सा केन्द्र से संपर्क में रहत आ टीकाकरण के पूरा जानकारी उनका से प्राप्त करी कि ना
0: आ जँ एहि तरह करथिन तो अवश्य अछि जे हमरा लोकनि संक्रामक रोग से पशु के बचा सकै छी। तऽ
1: देखू भाई आपके विचार
0: हँ बुझि रहल छी अहाँ मनक बात जे हमर बुझि रहल छी अहाँके
1: किछु गीत ना जे रमन चमन भऽ जाय
0: तऽ आउ हमरा लोकनि सुनै छी एकटा ई लोकगीत
1: सुनल जाय स्वर छन अरविंद कुमार झा के सुनी।

0: खूब निक लागल। आशा करै छी जे श्रोता लोकन के सेहो निक लागल हेतन। आब पुनः जे किसान श्रोता लोकन के कार्यक्रम में शामिल करै छी और हमरा लोकन अखन जे चौर चाकर जो देख रहल छी जे पानि तऽ नहि भेल या हमरा लोकन जो छै पानि पर जो छै आशा लगेने छी, ओना भारतीय कृषि के मानसून के संग जे जुआ सेहो कहल गेल छै। वर्षा होइ छल तऽ खेती होइ छल आ वर्षा नहि होइ तऽ खेती नहि होइया। तो हमरा लोकन के पानी के ताक में लगल छी, खेत जुग के कदबा के कह के छोड़ देने छी, बीया तैयार सेहो अछि मुदा बरखा नहि भ रहल अछि और हमर किसान श्रोता लोकन ताक में जब जे छै लागल अछि। कारी कारी बादल उठत अछि और माने जेना रेलगाड़ी जका आगे बढ़ जात अछि।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
3: जनकपुर जाने के लिए आए,
2: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
3: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
2: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
2: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: हाँ, तो हमारा लोकन खेती बाड़ी पर गपशप करे छलो विजय भाई। तो देखियो खेती बाड़ी तखने निक होइ छै, ओना तऽ हमर किसान श्रोता लोकनि बहुत परिश्रमी छथि, मेहनती छथि आओर सदखन खेत पथारमे लागले रहै छथि। तऽ आउ एहि विषयपर एकटा हमरा लोकनि गपशप भेटवार्ता एकटा सुनै छी।
5: हँ हँ, तऽ भेटवार्ताके अछि कदवा विधिसँ धानके खेती, आ भेटवार्ताकार छथि भोला यादव आ हुनकासँ भेट कऽ रहल छथि देव नारायण यादव। तऽ सुनी दुनू गोटाके बातचीत सुनल जाए।
6: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आई हम आयल छी सुन्धा गांव। ये गांव दरभंगा सदर प्रखंड वासदेवपुर पंचायत के अंतर्गत आबत है। इतो के जो किसान के जो देख रहल छी जे काफी कर्मठ अछि, मेहनती अछि और परिश्रमी सेहो अछि। देख रहल छी जे चौर चाकर में जे किसान श्रोता लोकन अपन खेती बाड़ी में लागल छै, तऽ आउ वही क्रम में इतो के किसान से गप शप करी। श्रीमान अपने के की नाम?
7: हमर नाम भोला यादव भेल।
6: भोला यादव जी, अपने जो खेती बाड़ी जो कर रहल छियै अखन कोन कोन फसल के तैयारी चल रहल छै?
7: अभी तो सीजन के हिसाब से अभी धान के खेती के तैयारी चल रहा है।
6: धान के तैयारी चल रहा है। धान के खेती में जो छे यहाँ के जो छे खेती बाड़ी जो अपने धान के जो करे छे, तो कौन विधि से खेती करे छे? कदवा विधि से करे छे या छिटकाव विधि से करे छे?
7: कदवा विधि से हम सब कर ली। ठीक है, वही के बाद अपना बीज रोपण भेल, कदवा कह के हिसाब से अपना खेती कर।
6: अभी जो छे बरखा बुनी नहीं भ रहा है, एहि बेर में जो है की कह के चाहे छे?
7: बरखा तो मेन समस्या छे, पानी उनी नहीं होइ छे, लेकिन हम सब की करबे, किसान छी की वह पे खेते पथार पर डिपेंडेंट छी, तो ओकरा लेल हम सब विशेष बोर्डिंगे से पानी पटा करके खेती बाड़ी होइ छै, कदवा कह के अपना वह में बिया भाव सब लगाबै, तो पानी के विशेष दिक्कत होइ छै। ई अभी वैसे भी जलवायु परिवर्तन सब भ रहल है, ढेर प्रकार के दिक्कत होइ छै।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हाँ विजय भाई, संदेश से पहने हमारा लोकन सुने छलो अरविंद कुमार झा के स्वर में भोला सुनियो दुपाती, ई लोकगीत सुनल छलो।

0: बारिश नहीं होइ छै।
1: बहुत नीक गप कहलिए कि जलवायु परिवर्तन, भोला जी अखन जो जलवायु परिवर्तन जे आम जीवन कोना प्रभाव,
0: देखिए अभी आने वाला समय में देखियो जलवायु एक बहुत बड़ा असर कर रहा है, खास कर एग्रीकल्चर के खेती गृहस्थी के क्षेत्र में होइ छै जलवायु परिवर्तन में। निचली स्तर से गर्मी बढ़े, सूखा पड़ रहा है, समुद्री के जल स्तर बढ़ रहा है, पानी गर्म भ रहा है, नीचे धरती गर्म भ रहा है, एकरा कारण ई परिवर्तन देखे के मिले। अब धरती में नमी और पानी के कमी जब हेतै तो किसान खेती केना करते, एकरा लेल भारत सरकार विशेष तरह के उपाय और विशेष तरह के एग्रीकल्चर में व्यवस्था करल गेले है। बड़ा बड़ा वैज्ञानिक है कि आप किसान को कैसे खेती किया जाए, जब इस तरह का मौसम आवे कैसे खेती, सारा भारत सरकार सुविधा दे रहे हैं और जहां एग्रीकल्चर विभाग में जा करके जानकारी ले हमारे किसान भाई सब और देखे कि खेती गृहस्थी कैसे किया जाता है, ये सब पे ध्यान।
1: बहुत नीक गप कहलिए। अखन का जो छे जलवायु परिवर्तन होना तो एक समय छल जे जखन जलवायु तो के ठीक छल भोला भाई, तो तखन जो छे होइ की छले कि जे सारा पर्यावरण भ रहल छल, तो अखन का समय में दिन प्रतिदिन देख रहल छे जे जलवायु परिवर्तन भेला के कारण आम जीवन पर तो प्रभाव पड़ते है, संग संग खेती बाड़ी पर सेहो प्रभाव पड़ रहा है, संग संग माल मवेशी और खेती बाड़ी के दोनों एक दूसरे के पूरक सेहो कहल गेल है। अपने जो खेती बाड़ी जो करे छे तो अपने जो वर्षा के पानी से करे छे या बोरिंग लगा के या नहर से बड़ा करे छे?
0: देखियो अब उन बात नहीं रहल है नहर की, तो देखियो होय छे कि बोरिंग करेने छी 2 से 5 सेंटीमीटर अपना धान खेत में पानी के ऊंचाई रखे छी, ताकि 2 से 5 सेंटीमीटर पानी अगर उसमें रहते खेत में लवा लव तभी जाकर के ओकर बीज बढ़िया से न। धान के खेती में सभी किसान भाई बहन सब के एक बात के जरूर ध्यान दे के चाहिए, पानी में कदवा लग जाए छे, कदई जब और पथार वह कदई पे होए लगे छे, ई सबसे के चीज के विशेष ध्यान रखे के चाहिए। जब बीज रोप दिलिए बिया के तब कुछ दिन के बाद हेंगाई करू, हम सब हेंगाइयो करे छे कि ताकि पेड़ पौधा में कदवा कदई सब नहीं लगे, वह जाके बाद में खर पतवार सब दिक्कत करे छे और अनाज बढ़िया से नहीं फैले।
1: बहुत नीक गप कहलिए अपने जे खर पतवार नियंत्रण होइ छे कि जे हम तो खेती करे छे, हम तो बिया पाउक लगाबे छे, मनोखो थरक जे धान लगाबे छे, रंग बिरंगक जो छे धान के जे छे बुआई सो करे छे, मुदा देखे छी कि जेना बिना बुलाल मेहमान जका जे मेहमान पहुंच जाय छे तो ठीक ओना ही जे देखे छी जे खर पतवार आगू आगू आ फसिल पाछू पाछू, तो ई खर पतवार के नियंत्रण लेल अपने जो छे केना की करे छी?
0: होय छे कि पहला तो कदवा क देली, बिया रोप देली, बिया कनी नमर भेल, देखली पानी सब में कदई लग गेल, तो कदई के हेंगाई करे छी, अपने हेंगाई केलहुँ और पेड़ के फैलेलहुँ, उसे की होय छे बीज के जे बिया के पेड़ सब होय छे छतरल, ओहिमे तरह तरह के अपना जड़ सब चतरे रहलक, ओहिमे तऽ दाना ज्यादा होय ठीक छै, आ कदवा कदई हटलक तो देर और पथार सब वही से होय छै, ओहिमे तरह तरह के पैदा ले लै, तो उ सब हटल रहतै, काई सब लगल लै छै उ सब हटल रहतै, एहन मुसीबत। हाँ ढेर प्रकार के सरकार केमिकल दवाई सब लेने छै, वो सब के छिड़काव होय छै ताकि ई सब तरह के पौधा के उत्तर न फसल में दिक्कत न।
1: खर पतवार निवारण के बाद अहाँ के जे छै जो उर्वरा शक्ति के सेहो व्यवहार करत होबै, तो अहाँ उर्वरा शक्ति जो दै छियै खाद वगैरह दै छियै तो कोन कोन खाद के अहाँ व्यवहार करै छियै?
0: देखियो उर्वरा शक्ति में तो अपन एगो कम्पोस्ट छै अपन देसी, वो व्यवहार करै छी और जाय छी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के उहो से खाद उद ले लै छै, लेकिन तो यूज नहीं करे के चाहिए रसायन खाद, लेकिन कुछ मायने में आप कनी मनी छिड़काव कर दे छै तो कुछ राहत होय।
1: तो अहाँ जो छै बेसी से बेसी कोन खाद के व्यवहार करै छियै, जैविक खाद के व्यवहार करै छियै या रासायनिक खाद के व्यवहार करै छियै?
0: जैविक कम्पोस्ट के हम व्यवहार करै छी और नीक ढंग से खेत करै छी, कोई तरह के दिक्कत नहीं होय छै हमर खेती में।
1: नीक गप कहलिए कि जैविक खाद के व्यवहार कैला से एकर जो छै मानव स्वास्थ्य जे शुद्ध बना के रखत है आ मानव जीवन पर एकर जे छै सेहो नीक प्रभाव पड़े छै, तो एहि लेल अहाँ जे छै आन किसान लोकन के की कहबन जैविक खाद के बारे में?
0: जैविक खाद अहाँ के पौष्टिक चीज, अहाँ के जो भी दाना जो भी फल फसल के उपजा होय छै जैविक खाद से एकदम स्वास्थ्य के लिए एकदम बेहतर होय छै, रसायन के जितना प्रयोग करबै वो उतना शरीर के स्वास्थ्य के लिए दाना खराब, और जैविक खाद के जो भी दाना जो होय छै फसल होय छै ओकर बनावट और रासायनिक खाद के तरफ से जो होय छै खेती ओकर बनावट में बहुत अंतर होय छै, अहाँ गौर से देखबै दुनू के अनाज।
1: बहुत नीक गप कहलिए कि जे है जैविक खाद के जे व्यवहार कैला से मानव स्वास्थ्य के लेल नीक होय छै। भोला जी अहाँ खेती गृहस्थी विषय पर गप सप कऽ के बहुत नीक लागल, आशा करै छियनि कि जे आन किसान श्रोता लोकन के सेहो नीक लागल, एहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देव भाई एखन हमरा

0: लोकन भेंटवार्ता सुन रहा छोड़ कदबा विधि से धान के खेती आ भेंटवार्ताकार छा भोला यादव उनका से भेंट कर रहा छा देव नारायण यादव।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: विजय भाई एकरे संग खेती गृहस्थिक समय संपन्न भेल, आप किसान श्रोता लोकन से चले के आज्ञा ली। नमस्कार विजय भाई।
0: नमस्कार देवू भाई।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अरे मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
2: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
1: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
3: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
5: कोई मतदाता ना छूटे।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद में स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य में 5 लाख शिक्षकों के तबादले की अधिसूचना जारी, 29 जुलाई से शिक्षक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में डिजाइन की गई यह रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से हर भारतीय गौरवान्वित हुआ है।
1: भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर एक एक हिंदुस्तानी को गर्व हो। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शुरू होने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया के कुछ देशों में चलने वाली ट्रेन से काफी बड़ी है।
1: दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित

0: और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में यह शुरुआत पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। भारत में ही डिजाइन की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। जिंद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ यह ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार सहित देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इसमें मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाला भागलपुर जिले का शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। बिहार सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सर्वम एआई और कोरोवर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य को एआई आधारित प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिलाने में मदद करेगी। इस समझौते के तहत नागरिकों को हिंदी के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी भारतीय भाषाओं में एआई आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों को मौसम, फसल, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त हो सकेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। इधर बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सुचारू संचालन को लेकर सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा की।
2: हम सभी का सामूहिक दायित्व है सदन की गरिमा, मर्यादा और संसदीय परंपराओं को सर्व प्राथमिकता दें। पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र के 2 सत्र असंभव है। विचारों में मतभेद स्वाभाविक, इन लोकतांत्रिक संवाद, शालीनता और मर्यादा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे बरकरार रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत इस बार स्थानांतरण की प्रक्रिया 3 अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। इच्छुक शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। चयनित शिक्षकों का स्थानांतरण 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पहले और नए नियम लागू किए जा रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाश

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि देश में चुनाव संविधान, निर्वाचन संबंधी कानूनों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कराए जाते हैं। अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सही और तथ्यात्मक जानकारी जनता तक पहुंचाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया है कि एनडीए अपनी जीती हुई सीट फिर से जीतेगा।
1: पूरी तैयारी जैसे तैयारी होती है, घर घर लोग जा रहे हैं, अपने वोटरों को समझा रहे हैं, एनडीए का काम को जानकारी दे रहे हैं, जीता हुआ सीट है फिर जीतेंगे।
0: वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव में मुख्य विपक्षी दल राजद मैदान में कहीं भी नहीं है। श्री पासवान ने कहा कि चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।
2: मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त, तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर कहा कि उन्हें राजद ने कोई सम्मान नहीं दिया। श्री सुमन ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि राजद संगठन में जंगल राज व्याप्त है।
3: देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी जिस विचार के व्यक्ति हैं और जितना अनुभव है और उनके पास, हम समझते हैं कि औसी पार्टी में इतना दिन टिकी गए बहुत बड़ी बात है। हमें तो आश्चर्य होता है कि कैसे उस तरह के व्यक्ति उस कल्चर में रह रहे हैं जहां जंगल राज की बात होती है, जहां दूसरे तरह की बात होती है, तो आज उनको सबक मिला है।
0: राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के अनेक भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है।
4: राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: नेपाल में भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान समेत उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से योगापट्टी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। आज भी वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,21,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। बाढ़ से घिरे गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

0: मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज स्थित पंडई नदी में नहाने के दौरान एक बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत तालाब में डूबने से एक श्रमिक की मौत हो गई। सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मलमलिया में कार्यरत शिक्षक श्याम सुंदर मंडल से जमील दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशनगंज के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और दिघल बैंक थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 52 पेटी चाइनीज सेब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर बक्सर जिले के वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर जांच के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर से 307 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के रोहुआ हाई स्कूल के समीप नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन के रिसाव से 5 छात्र बेहोश हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद में स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य में 5 लाख शिक्षकों के तबादले की अधिसूचना जारी, 29 जुलाई से शिक्षक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्निकांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
2: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
3: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
4: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
3: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
2: 1950?
3: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
2: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
3: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
4: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
3: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
6: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
7: गया के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में बिहार विधानसभा के सभी 243 विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बिहार विधानसभा सचिवालय लोकसभा सचिवालय की संस्था प्राइड

0: और बिपार्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों को संसदीय कार्य प्रणाली, विधानसभा के नियमों, विधायी प्रक्रियाओं और जन सेवा से जुड़े विषयों की जानकारी देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी उपस्थित रहे। विभिन्न सत्रों में जन प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों के विकास, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, आधुनिक तकनीक के उपयोग और सदन में जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का आह्वान किया गया। इधर राज्य सरकार के साथ निश्चय 3 के तहत जिले में मोहरा, कोंच, मोहनपुर, बांके बाजार, डुमरिया और निमचक बथानी प्रखंडों में नव स्थापित डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गयी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारम्भ किया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत केवाल पंचायत के रघुनाथपुर नगर गांव में 3 वर्षीय पीयूष कुमार खेलते खेलते एक खुले बोरवेल में गिर गया। बच्चा करीब 30 से 35 फीट की गहराई में फंस गया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। करीब 7 घंटे तक चले कठिन और चुनौतीपूर्ण अभियान के बाद टीम ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चे को सुरक्षित बाहर आते ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम के समन्वित प्रयासों से यह रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बीते दिनों बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान और बिहार जुडिशियल एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा करीब 250 न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने और पुलिस और न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इधर राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खिजरसराय प्रखंड की चिरैली पंचायत स्थित 12 गाँव में एक प्रगतिशील किसान के खेत पहुँचकर धान की रोपाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीफ फसलों के रकबे, बीज वितरण और उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि जिले में यूरिया, डीएपी सहित सभी आवश्यक उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कम वर्षा की स्थिति में किसानों से सीधे धान की बुआई की तकनीक अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे कम पानी में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पिछले दिनों जिले में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज ओलंपियाड 2026 का उद्घाटन मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर अनंताशुतोष द्विवेदी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में नई पीढ़ी को जोड़ना समय की आवश्यकता है, ताकि युवाओं में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता और संरक्षण की भावना विकसित हो सके। इधर 77वें वन महोत्सव के अवसर पर गया वन प्रमंडल की ओर से गांधी मैदान स्थित मंडप पार्क की जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के दौरान गया वन प्रमंडल क्षेत्र में लगभग 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने और लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
1: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं संतोष आनंद का लिखा हुआ, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे।

आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रोग का ये गाना सुरेश वाडेकर का गाया हुआ, और अब सुनिए जानिशार अख्तर का लिखा हुआ ये नगमा जिसकी धुन बनाई है जयदेव ने, आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

0: राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर को। शब्द रचना थी आमिर कजल बख्श की और संगीत रविंद्र जैन का था। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की।

0: अपनी सी अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

स्वागत अछि अपने सब गोटे के आजुक अंक में। आने दिन जकां आइयो अपन नियत समय पर मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार आरंभ भ गेल अछि। आई अहां सब सँ गप करबाक लेल अहाँक साहित्यिक सहयात्री छी हम सोनू। बंधु अहाँ सब जनित छी जे आधा घंटाक एक कार्यक्रम में हम अपने लोकन सँ साहित्यिक गपसप करैत छी, संगे मैथिलीक कर्णप्रिय गीतक आनंद सेहो लैत छी। कथा व कविताक आनंद सेहो लैत छी, ततबे नहि अपन जे किछु ठेठ शब्द सब अछि जे आब हरसठ्ठे मोन नहि पड़ैत छै वा लोक ओकर उपयोग कम करैत अछि, आ आजुक जे नव पीढ़ी नेना लोकनि सब अछि ओतऽ ओ सब शब्दक अर्थ तऽ नहिए बुझैत अछि, शब्द सेहो ओकरा सबके कममे सुनबामे अबैत छैक। तऽ एहन जे शब्द सब अछि ताहिमे सँ किछु शब्द ताकि कनैत छी आ ओहिपर सेहो गप करैत छी। एहि कार्यक्रममे मने ई जे साहित्यिक कार्यक्रम अछि ताहिमे कहियो हमसब कोनो पुस्तक पर परिचर्चा रखैत छी तऽ कहियो अपन कोनो वरिष्ठ साहित्यकारक विषयमे गपसप करैत छी। विशेष जँ ओहि दिन हुनकर जन्मदिवस रहैत छनि वा अवसान दिवस रहैत छनि तऽ निश्चित हमरा लोकनि हुनका शुभकामना दैत छियनि, मोन पारैत छियनि। असे मोन पारबाक जे हमरा सभक अपन साहित्यिक गपशप अछि ताहि सङ्ग से हुनका मोन पारैत छियनि, हुनक जे साहित्य लेखन छै ताहिपर गपशप करैत छी। ताहिसँ बात की होइत अछि जे जखन हम अपन कोनो वरिष्ठ साहित्यकारक विषयमे गप करैत छी, अपन पहिलुक पीढ़ीक जे साहित्यकार छथि तिनका विषयमे गपशप करैत छी, तऽ जे नव लेखक नव साहित्य प्रेमी लोक छथि, नव श्रोता छथि, हुनका सेहो ओहि व्यक्तिक विषयमे हुनक साहित्यिक विषयमे किछु जानकारी भेट जाइत छनि। तऽ से हमसब प्रयास करैत छी जे एहिठामसँ हम हुनका पर गपशप करी, हुनक साहित्यिक विषयमे अपने लोकनि सङ्ग

तऽ गप करबा क्रममे हम ई अवश्य ध्यान रखैत छी, एहन नहि हुए जे बस गप करैत रही आ अहाँक मोन से गपसँ उसठि कऽ कतौ आन ठाम चलि जाय। से हम चाहैत छी जे कतौ जे मोन आन ठाम जाय ताहिसँ पहिने ओकरा घीचि कऽ फेरसँ एकाग्र करी अपन कार्यक्रम लेल, आ तकरा लेल सबसँ नीक माध्यम अछि कर्णप्रिय गीतक आनंद लेब।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एखन हम सब ई संदेश सुन रहल छलौं हैं, आ ताहिसँ पहिने हमरा सब ओम प्रकाश सिंह आ हुनक संगी सभक स्वर में कर्णप्रिय गीतक आनंद लैत छलौं हैं। आइ हम सब जे गप करल आयल छी से अपन ओहन साहित्य लेखकक विषय में, जे साहित्य लिखबे टा नहीं कलन, ओ साहित्य में नव प्रयोग सेहो कलन, आ ताहि लेल ओसे जानलो जाइत छथि। अहाँ बुझि गेल हैब जे हम गप कऽ रहल छी ध्वस्त होइत शांति स्तूपक लेखक कीर्ति नारायण मिश्रक विषय में। कीर्ति नारायण मिश्र मैथिली साहित्यक एकटा महत्वपूर्ण लेखक छलथि, कवि छथि। ई कविता में नव प्रयोग सेहो कयलनि अकवितावादक। हिनक कविता सब तीख भावबोधक होइत अछि, यंत्रणा सँ मुक्ति पयबाक बाट पर तकैत अछि। कहि सकैत छियै जे गत शताब्दीक सातम दशकक महत्वपूर्ण कवि मे विख्यात छथि कीर्ति नारायण मिश्र। हिनक कविता संग्रह ध्वस्त होइत शांति स्तूपक लेल वर्ष 1997 ईस्वी में हिनका साहित्य अकादमिक पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेल छनि। एकर अतिरिक्त हिनक

आओर कविता संग्रह सब छन जाहि में सीमांत, महानगर, हम 57 नहीं लिखब, आदमी के जोहित, जेठक तप्त शिला, इसे महत्वपूर्ण कविता संग्रह छन। ई मात्र कविता लिखबे टा नहीं केलन, ई कविता में स्वयं के जीवित छला। ततबे नहीं, ई कविता संग संग मने पद संग संग गद्य रचना सेहो केलन। कीर्ति नारायण मिश्र महत्वपूर्ण संपादक जकां सेहो छला, एक बहुत रास किताबक संपादन सेहो केलन। अपन एहि महत्वपूर्ण कविक जन्म सुकहरा बरौनी जिला बेगूसराय में अजके दिन मने 17 जुलाई 1937 ईस्वी का जन्म लेत छथि। आ कीर्ति नारायण मिश्र अपन लेखनक आरंभ हिंदी से करित छथि, मुदा लगले ओ मैथिली में आबि जाय छथि। हुनक मैथिली लेखनक आरंभ 1959 ईस्वी से आरंभ भ जाय छन्हि। हिनका अपन लेखनक लेल मने हमर एहि महत्वपूर्ण लेखक के बहुत रास सम्मान सब सेहो भेटल छन्हि, बहुत रास पुरस्कार सब सेहो भेटल छन्हि, जाहि में किछु महत्वपूर्ण सम्मान पुरस्कार में हिनका दिनकर जनपदीय सम्मान 1996 ईस्वी में भेटित छन्हि। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में भेटे छन्हि। सहस्त्रावधि सम्मान 2000 ईस्वी में भेटित छन्हि। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थाक सौहार्द सम्मान 2015 ईस्वी में भेटित छन्हि। महत्वपूर्ण प्रबोध साहित्य सम्मान सेहो हिनका वर्ष 2018 ईस्वी में भेटित छन्हि। विशंभर फाउंडेशन द्वारा देल जाय वाला मैथिली साहित्य सम्मान 2020 ईस्वी में हिनका देल जायत छन्हि। आ एकरा अतिरिक्त आर कतेको रास राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सब कीर्ति नारायण मिश्र के भेट चुकल छन्हि। कीर्ति नारायण मिश्र मैथिलीक एकटा महत्वपूर्ण लेखक छथि, जिनका पढ़ि कऽ बुझल जा सकैत अछि। नव लोक के खास कऽ हुनका पढ़ब आवश्यक अछि। जखन हम हुनका पढ़ैत छी तखने हम हुनका बुझि पायब असल में ओ हमर केहन कवि छला, केहन लेखक छला, हुनकर संपादन कला की छलनि हैं। हमर एहि महत्वपूर्ण लेखकक अवसान 4 जुलाई 2025 ईस्वी के भऽ जाइत छन्हि। आई ओ नहि छथि, मुदा अजुके दिन ओ छी जहिया हुनकर जन्म भेल छलनि हैं। आजुक दिन
हमरा सभक लेल।

महत्वपूर्ण अछि। हम सब हुनका मोन पारी। आह देखू जे एक क्रम में हमरा मोन पड़ि रहल अछि जे कार्यक्रमक जे रूपरेखा अछि ताहिमे शब्द विमर्श सेहो अछि, तऽ किछु शब्द पर सेहो गप करब आवश्यक अछि। ताहि क्रम में एकटा शब्द अछि उपरौंझ। उपरौंझ मने होइत अछि ऊपर ऊपर करब, मने पहिले हम, पहिने हम, पहिने हम करब, उपरौंझ करब कहल जाइत अछि। दोसर अछि बतकुट्टैन। बतकुट्टैन मने बिना मतलब के गप करैत रहब, गप करब के बतकुट्टैन कहल जाइत छै। आ दोसर फदका करब मने गप सप करब। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। देखू जब समय इशारा कह रहल अछि जे हमरा लोकनि के अपन कार्यक्रम समेटबाक समय भऽ गेल अछि, मुदा हमर विचार जे जायसँ पहिने अपने लोकनि के एकटा आर कर्णप्रिय मैथिली गीत सुनबैत चली।

विभा सिन्हक गाउल एक कर्णप्रिय गीतक संगहि सिंगारहारक समय एते सम्पन्न होइत अछि। सोनू के चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

0: आप सुने थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। कुछ क्षणों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से

0: के साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
0: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा

0: और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की 4th नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ

0: सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। मायानाज वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। और भारत ने अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में मुनक्किद होने वाले FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिर सहूलतों में इजाफा करना और खित्ते में माशी तरक्की को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने तजीन नौ किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। जालंधर में आवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत के हर शहरी की खिदमत करना, उनकी जिंदगियों को आसान बनाना और उन्हें तरक्की के नए मौके फराहम करना मरकज की NDA हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये NDA हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर कुंबा, चाहे वो गरीब हो या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता हो, उसे बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें और हुकूमत के कामकाज में नागरिक देवोभव के जज्बे की अक्कासी हो।
1: हम नागरिक देवोभव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवोभव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन सभी जदीद सहूलतों से लैस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन स्टेशनों की कायापलट का प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन तजीन नौ प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है।
1: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तिलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और 6 लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संग बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी जमातों से तआवुन चाहेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस दौरान आज नई दिल्ली में वुजरा के ग्रुप की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजू रंजन सिंह, किंजरापू राममोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लीडरों ने आइंदा पार्लियामानी इजलास की हिकमत अमली तरतीब दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 19 से 25 तारीख तक मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात

0: ओडेसा के जुनूबी साहिली शहर पर रूस के एक मिसाइल हमले में दो अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि ज़ेपोरोजिया खित्ते में एक और हमले में मजीद दो अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हुकाम ने रूसी हमलों में मुल्क के दीगर 5 खित्तों में लोगों के जख्मी होने की भी खबर दी है। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का इंतखाबी कमीशन ECI दुनिया के सबसे शफाफ और मोतबर इंतखाबी इदारों में से एक है, जहां दुनिया की कई जमहूरियतें भारत के इंतखाबी अमल को एक मॉडल के तौर पर देखती हैं। इंतखाबी कमीशन की जानिब से मुनक़िद ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन के तहत आज़ादाना तौर पर मुनक़िद कराए जाते हैं, जहाँ शहरियों को अपने नुमाइंदे चुनने की आज़ादी हासिल होती है। भारत के महकमे मौसमियात ने ज़ैली हिमालय मगरबी बंगाल और सिक्किम में आइंदा 2 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में इतवार तक किसी किसी मुकाम पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा और शुमाल मशरकी रियासतों में कल शदीद बारिश की तवक्को है। वेस्टइंडीज के मायानास क्रिकेट खिलाड़ी सर गैरफील्ड सोबर्स का आज इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। मायानास क्रिकेटर की मौत की तस्दीक उनके फर्जंद डैनियल ने की है। मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के दरमियान क्रिकेट के खेल में बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8032 रन स्कोर किए। इनमें 26 सेंचुरीज और 30 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एक वाहिद ODI भी खेला है, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर के दौरान 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। ये संगमील उन्होंने साल 1968 में ग्लैमॉर्गन के खिलाफ नॉटिंगम शायर के लिए खेलते हुए कायम किया था। भारत ने आज FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिडफील्डर सलीमा टेटे इस पुरवकार टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी, जो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में मुनाकिद होगा। गोलकीपर सविता और बिचू देवी खरीबाम ने टीम में अपना मुकाम बरकरार रखा है। इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पुरखरमरम ज्योति और शिल्पी दाबास दिफाई पोजीशन संभालेंगी। मिडफील्ड की क्यादत सलीमा टेटे करेंगी और उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, नेहा और दीपिका सोरेंग इस पोजीशन पर खेलेंगी। भारत की फॉरवर्ड लाइन ऋतुजा, ददोसा पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डंगेरडंग संभालेंगी। भारत को पूल डी में रखा गया है, जिसमें चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। टीम 18 अगस्त को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और 20 अगस्त को इंग्लैंड के मुकाबले मैच से कबल हॉकी स्टेडियम में 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। और मायानास वेस्टइंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम साहित्य की।

0: साहित्य की। श्रोताओं नमस्कार, साहित्यिकी के आज के इस अंक में आप सुनेंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं हीरालाल सहनी, दीनानाथ लाल, मिथिलेश कुमार सिन्हा, भारती रंजन कुमारी और सुधीर कुमार सिंह। लेकिन पहले संपादकीय। श्रोताओं, मानव सभ्यता के विकास में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विचारों ने साहित्य को जन्म दिया तथा साहित्य ने मानव की विचारधारा को गतिशीलता प्रदान की, उसे सभ्य बनाने का कार्य किया। मनुष्य की विचारधारा में परिवर्तन लाने का कार्य साहित्य द्वारा ही किया जाता है। इतिहास साक्षी है कि किसी भी राष्ट्र या समाज में आज तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं वे सब साहित्य के माध्यम से ही आए हैं। साहित्यकार समाज में फैली कुरीतियों, विसंगतियों, विकृतियों, अभावों, विषमताओं आदि के बारे में लिखता है। इनके प्रति जनमानस को जागरूक करने का कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि साहित्य जनहित के लिए होता है। जब सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों का पतन होने लगता है तो साहित्य जनमानस का मार्गदर्शन करता है। इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर एक क्षेत्र में समाज की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में उसके साथ क्या घटित होता है उसे साहित्यकार शब्दों में रचकर साहित्य की रचना करता है। यानी साहित्यकार जो देखता है, अनुभव करता है, चिंतन करता है, विश्लेषण करता है, उसे लिख देता है। साहित्य सृजन के लिए विषय वस्तु समाज के ही विभिन्न पक्षों से ली जाती है और साहित्यकार साहित्य की रचना करते समय अपने विचारों और कल्पना को भी उसमें सम्मिलित कर देता है। अतः आवश्यक है कि साहित्य लेखन निरंतर जारी रहना चाहिए, अन्यथा सभ्यता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे संपादकीय। साहित्यिकी में लीजिए अब प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं हीरालाल सहनी, दीनानाथ लाल, मिथिलेश कुमार सिन्हा, भारती रंजन कुमारी और सुधीर कुमार सिंह। संचालन कर रहे हैं शंकर कैमोड़ी।
1: श्रोताओ, आज स्टूडियो में जो कवि गोष्ठी आयोजित है उसमें जो कविगण भाग ले रहे हैं उनमें हैं श्री हीरालाल सहनी, श्री दीनानाथ लाल, श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा और भारती रंजन कुमारी और सुधीर कुमार सिंह। आप सभी कवियों का स्टूडियो में स्वागत है और साहित्य की कार्यक्रम के अंतर्गत आज कवि गोष्ठी जो आयोजित है उसका शुभारंभ मैं यहाँ से करना चाहता हूँ कि कोई हो गया है मेरा, मेरी कल्पना से पहले। कोई हो गया है मेरा, मेरी कल्पना से पहले, मेरा देवता मगन है, मेरी वंदना से पहले, कहीं शीश क्या झुकाऊं, कहीं हाथ क्या पसारूं, क्या मुझे भीख मिल गई है मेरी याचना से पहले। तो इन्हीं चार पंक्तियों के साथ हम इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करना चाहते हैं। और सुधीर कुमार सिंह जी, हम आपसे हम शुरू करना चाहते हैं और चिंतन की पंक्तियां आपकी होती हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। सुधीर जी,
2: मंच पर शब्द आया, मंच पर शब्द आया, परपंचों को तोड़ते हुए आया, एक सवार कबीर की लुकाटी की तरह,
1: वाह,
2: सुलगता सवाल,
3: वाह,
2: तरपता सवाल, एक सवाल कबीर की लुकाटी की तरह, सुलगता सवाल, तरपता सवाल, रैदास की कठौती की गंगा की तरह छलकता,
1: वाह वाह वाह,
2: रैदास की कठौती की गंगा की तरह छलकता, और हमसे तुमसे सबसे पूछता, कहो कहाँ है बसंत, कहो कहाँ है बसंत, देखो यहाँ अपनों में अपनापन पत्ते की तरह झर रहे हैं,
1: वाह वाह वाह,
3: क्या बात है,
2: यह देखो यहाँ अपनों में अपनापन पत्ते की तरह झर रहे हैं, कहाँ है बसंत, जब आधुनिकता की अंधी दौर में आदमी आदमखोर है, कहाँ है बसंत, अपना बन के अपनों का खून पीता हुआ, कहाँ है बसंत, बता कहाँ है बसंत,
1: वाह।
2: तभी एक बंजारा लेकर दिल का एक तारा, हृदय की बीना को

0: बजाता, हृदय की बीना को बजाता, बीज को धरा के कुरुक्षेत्र में उतारा।
1: वाह वाह,
0: बीज को धरा के कुरुक्षेत्र में उतारा।
2: बहुत।
0: बीज गलने लगा, गरने लगा, रचने लगा, बसने लगा, खुलने लगा, खिलने लगा, खुशबू की तरह झूमने लगा।
1: वाह वाह
2: वाह वाह वाह
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: और वह बंजारा कहा, सुन, मत हो निराश, मत हो निराश, इस अंधेरे में जहां परछाई भी साथ छोड़ दे, ऐसे में जुगनू का आस में चमकाता हूं, ले इस बीज में अनंत बसंत।
2: वाह वाह वाह,
0: इस बीज में है अनंत बसंत, इस बसंत में छंद है, रंग है, मंच है, सुन, सुबह की सुनहरी किरण तेरे आंगन में उतरती है, सुन, सुबह की सुनहरी किरण तेरे आंगन में उतरती है, चांदनी में रागनी है, सुन, चिड़ियों की चहचहाट में खुशी की आहट सुन,
2: वाह
1: वाह,
0: सुन सुन, आंधी में तिनका चुन, आंखों में सपना बुन, ले इस बीज में अनंत बसंत।
1: वाह
2: वाह वाह वाह वाह,
0: तुम पूछते हो हमसे, रंग बिरंगी दुनिया में रंग कहां से लाऊं, जहां गिरगिट की तला रोग रंग बदल रहे हैं, रंग कहां से लाऊं, आंखों की भाषा आज आंसू भी मगरमच्छ की बात अब होती है, अब रंग कहां से लाऊं, ले इस बीज में अनंत बसंत।
2: वाह वाह वाह,
1: बहुत।
0: सुन, सुन सकते हो तो सुन, मेरे साथ आ, मैं हृदय की बीना बजाऊंगा, अरे वक्त की रफ्तार में कहां तुम भाग गए, आ मेरे पास, मैं तुझे सुनाऊंगा, सुनाऊंगा, आ मेरे पास। ओरे कबीरा, तेरी लुकाटी से बासंती रंग छलके।
2: वाह
1: वाह वाह,
0: ओरे कबीरा, तेरी लुकाटी से बासंती रंग छलके, घर के घर हटका भस्म रमा के, घर के घर हटका भस्म रमा के, घर घर अलख जगाए रे कबीरा, तेरी लुकाटी से बासंती रंग छलके। रईदास।

0: वाह वाह
1: वाह वाह
0: वाह वाह
1: वाह बहुत
0: वाह
1: धन्यवाद। ये थे सुधीर कुमार सिंह। सुधीर जी कबीर की चर्चा कर रहे थे, रैदास की चर्चा कर रहे थे, संत ऋषियों की चर्चा कर रहे थे, कबीर के फक्कड़पन और उसमें भी उनकी लुकाठी से वसंत के उद्घोष का संदेश वो दे रहे थे। वसंत समझिए कि गेहूं के गोरे गालों पे जब रूपसी तितलियां बलखाने लगती हैं, तीसी के मरकते तथा सरसों के पुखराजी फूलों पर जब मालती लताओं को मतवाले भौंरे चूम रहे होते हैं, कहीं सूगे की चूंच के समान टेसू के फूल, कहीं हल्दी का रंग लिए कनेर के फूल, कहीं दिल फरेब चांदनी, कहीं मस्तानी काकली, कहीं गंधमाती बयार, कहीं उन्मादक गुंजार, ये ऐसे अनोखे रसायन हैं जिन पे कोई भी व्यक्ति अपने सम्मोहन का साम्राज्य और अनुराग का ऐश्वर्य लुटा सकता है। यामिनी जब प्रमोदिनी हो जाती है, उषा जब मधुर हासिनी हो जाती है, पादप पत्रों पे आनत अधरों का सोया साहित्य जब जाग उठता है, तब कहना पड़ता है कि सितम परस्तों में खुद को शुमार मत करना, दामने दिल तो कभी दागदार मत करना, दुलार करती हो चिड़िया जब अपने बच्चों को तो ऐसे वक्त में उसका शिकार मत करना। आइए इसी के साथ हम सुश्री भारती रंजन कुमारी जी से हम अनुरोध करते हैं कि आएं और अपने हिस्से का काव्य पाठ करें।

0: और राह जो तेरे घर की तरफ जाती है।
1: वाह
2: बहुत वाह।
0: वो राह जो तेरे घर की तरफ जाती है, उस गली से कुछ दूर चलने पर, दिल के एहसासों के मचलने पर।
1: वाह
2: बहुत सुंदर।
0: उस गली से कुछ दूर चलने पर, दिल के एहसासों के मचलने पर, तेरी बेवफाई भी याद आ जाती है। तेरी बेवफाई भी याद आ जाती है, क्यों रोए तू बेगैरत की जुदाई में, वापस लौट आ इस तन्हाई में। जख्म छुप छुप के यही आवाज लगाती है। वो राह जो तेरे घर की तरफ जाती है। इस दुनिया का ये अजीब दस्तूर है। तुझ जैसे लोग यहाँ बहुत मशहूर हैं। मैं औरत हूँ, यही मेरा कसूर है। और तेरा झूठ भी सबको मंजूर है। जिंदगी दो राहे पर खरी हो जाती है जब सच को भी रुलाई जाती है। वो राह जो तेरे घर की तरफ जाती है, जहाँ सिर्फ इंसानी बुत बनाई जाती है। इतना सुन लो जान लो और समझ भी लो। मैं औरत हूँ मगर कमजोर नहीं हूँ। तेरे अत्याचारों से टूट जाऊं, तेरे पतंग की वो डोर नहीं हूँ। अधूरे रास्ते को क्यों जाऊं, मैं वो मोड़ नहीं हूँ। जो समझ सको तो समझो, ये कैसा साथ दिया। लो ऐसे बंधन को आज मैं तोड़ रही हूँ। एक मुस्कुराना है मुझे चांद धरती पर उतार लाना है। एक नया रास्ता बनाना है मुझे। अब वो राह जो तेरे घर की तरफ नहीं जाती है मुझे बार बार वापस बुलाती है। मैं हौसलों से जिंदा हूँ, यही आवाज लगाती है। और अब वो राह जो तेरे घर की तरफ नहीं जाती है।
1: ये भारतीय रंजन कुमारी थीं जो काव्य पाठ कर रही थीं। उन्होंने समझिए कि विरह पक्ष को भी और एक तरह से एक मैसेज, एक संदेश भी अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने दिया। हम इसके बाद श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मिसिदा, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि मिथिलेश कुमार सिन्हा जी आएं और काव्य पाठ करें। मिथिलेश कुमार सिन्हा जी,
3: मैं गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। तुम्हारे यूं मुस्कुराने की वजह क्या है?
2: बहुत अच्छा।
3: तुम्हारे यूं मुस्कुराने की वजह क्या है, बता दे कोई, मिलने की गरज क्या है?
1: वाह।
3: तुम्हारे यूं मुस्कुराने की वजह क्या है, बता दे कोई, मिलने की गरज क्या है? हो गई है रात आधी, शहर नजदीक है।
1: वाह।
3: हो गई है रात आधी, शहर नजदीक है, तस्दीक कर लूं आपकी अरज क्या है?
1: क्या बात है, क्या बात।
3: हो गए खामोश वो यूं ही हंसते हंसाते उठी अर्थी, तो जाना कि सफर क्या है?
1: वाह वाह वाह।
3: खुदा के दर पर दुआ अता करता मैं कैसे?
1: क्या बात है, क्या बात है।
3: खुदा के दर पर दुआ अता करता मैं कैसे, जानता था वो उसकी अखड़ क्या है?
2: बहुत सुंदर।
1: क्या बात है, क्या बात।
3: खुदा के दर दुआ अता करता मैं कैसे, जानता था उसकी अखड़ क्या है?
1: वाह वाह वाह वाह।
3: मिलते हो तुम बड़े ही खुलूस से यारा, पूछा नहीं मिसदा की कसक क्या है?
1: वाह वाह वाह वाह।
3: पूछा नहीं मिसदा की कसक क्या है?
1: वाह।
3: धन्यवाद।

0: ये थे मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मिश्रा जी, और ये गज़ल पेश कर रहे थे। आप सबकी इच्छा हो तो गज़ल के दो शेर मैं भी सुना दूँ।
1: जी,
0: के खेत जब सरसों के
1: बहुत अच्छा
0: पीले हो गए,
1: बहुत अच्छा
0: खेत जब सरसों के पीले हो गए, मस्त रातें दिन सजीले हो गए। एक शेर केवल सुन लीजिए, के बिक गए घर बार तो कुछ गम नहीं, हाथ बेटी के तो पीले हो गए, हाथ बेटी के तो पीले हो गए। गजल के बारे में कहा गया कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ कहीं आंसुओं से मिटा हुआ।
1: बहुत अच्छा।
0: कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ ना सुना हुआ। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। और मेरे साथ जुगनू है हम सफ़र, मगर इस शरर की विसात क्या, मेरे साथ जुगनू है हम सफ़र मगर इस शरर की विसात क्या, ये चराग कोई चराग है ना जला हुआ ना बुझा हुआ। इसी के साथ हमारे बीच श्री दीनानाथ लाल जी हैं, हम श्री दीनानाथ लाल जी से अनुरोध करते हैं कि वो कविता प्रस्तुत करें।
2: मेरी कविता है नारी। नारी तुझे सलाम, नारी तुझे सलाम, दया भाव की तू सागर हो, दया भाव की तू सागर हो, ममता प्रेम की तू पैगाम, ममता प्रेम की तू गागर हो, मर्जादा की हो पैगाम, नारी तुझे परिवार की नैया के पतवार, परिवार की नैया के पतवार, संसार सृष्टि की तू बनी आधार, परिवार की नैया के पतवार, संसार सृष्टि के तू बनी आधार, तू करती कभी न विश्राम, नारी तुझे सलाम, नारी तुझे सलाम। समय समय पर रणचंडी बन जाती, समय समय पर रणचंडी बन जाती, घमंड दुश्मन को खूब छका छुड़ाती, अन्याय से रक्षा तेरा काम, नारी तुझे सलाम, नारी तुझे सलाम, नारी तुझे सलाम।
0: धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीनानाथ जी से अनुरोध करते हैं कविता के लिए। और
2: ये मैं जीवन पर दिया हूँ, और घड़ी और कर्म, जिस तरह से घड़ी चलती है उस तरह से ही हमको चलना है।
0: वाह।
2: जैसे चलती है घड़ी वैसे चलना जब सीख जाओगे, जैसे चलती है घड़ी वैसे चलना जब सीख जाओगे, तब असंभव को संभव कर दुनिया को दिखाओगे।
0: वाह, वाह।
2: तब असंभव को संभव कर दुनिया को दिखाओगे, कर सके ना जो कोई कार्य कोई वह तुम कर पाओगे, कर सके ना जो कार्य कोई वह तुम कर पाओगे, पथ प्रदर्शक बनकर तुम दुनिया को सिखाओगे, दुनिया को सिखाओगे। बीते हुए कर्मों के पश्चाताप यादों में आते जाते हैं, बीते हुए कर्मों के पश्चाताप यादों में आते जाते हैं, सच तो यही है कुछ यादें इतिहास बनकर रह जाते हैं, इतिहास बनकर रह जाते हैं, चाहे नफरत हो चाहे प्यार हो सब यही रह जाते हैं, दुनिया को दिखाकर हम मुस्कुराते चले जाते हैं, मुस्कुराते चले जाते हैं, यह अपना है, यह अपना है, यह पराया है, लोग को हम समझाते हैं, यह अपना है, यह पराया है, लोग को हम समझाते हैं, यह कहकर जाने अनजाने में रोग को हम रुलाते हैं, लोग को हम रुलाते हैं, रहने पर कोई

0: कुछ ना कहता, रहने पर कोई कुछ ना कहता, केवल हामी भरे जाते हैं, केवल हामी भरे जाते हैं, चले जाने के बाद हमारे कर्मों के गीत गवाते हैं, कर्मों के गीत गवाते हैं, कर्मों के गीत गवाते हैं।
1: वाह, दीनानाथ जी दो कविता प्रस्तुत किए। एक शेर पढ़ता हूँ के दिल से अपनाया न उसने,
2: बहुत अच्छा,
1: दिल से अपनाया न उसने,
2: बहुत बहुत,
1: गैर भी समझा नहीं,
2: बहुत वाह,
1: दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं,
2: नहीं।
0: वाह वाह वाह,
1: दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। तो आइए हम इसके बाद वरिष्ठ रचनाकार श्री हीरालाल साहनी जी हैं और वरिष्ठ हैं, तो उनके वरिष्ठता का सम्मान करते हुए हम उन्हें काव्य पाठ के लिए अनुरोध करते हैं। श्री हीरालाल साहनी,
3: कविता का शीर्षक है मिट्टी ही सृष्टि है।
1: हाँ, ये बात
3: कहते सुना है, शरीर मिट्टी का पिंड है, मिट्टी ही सृष्टि है, देवों की नगरी, स्वर्ग की सीढ़ी, देवों का देवत्व है, मिट्टी में अनंत है, सुख और दुख व्यवहार का अंतर बस, होगी पराजय नहीं, क्योंकि मिट्टी मिटती नहीं, जलती नहीं, वह परिवर्तन है, वह रूप का रूप में आओ हम पूजन करें।
1: बहुत
3: आओ
1: अच्छे, हम बहुत पूजन,
2: वाह बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: एक गजल है, भीड़ है बस इंसान हम है,
2: बहुत
3: भीड़ है बस इंसान हम है, हर किसी की पहचान गुम है,
2: बहुत अच्छा,
3: हर किसी की पहचान गुम है, चमक दमक सब व्यापारिक है, दिलों की मधु मुस्कान गुम है, प्रश्न पहेली उलझन सब है, मात्र एक समाधान गुम है,
1: वाह वाह,
3: जीवन महफिलिया कविता से भाव गायब लय तान गुम है, धर्म संस्कृति कुछ विस्थापित मंदिर से भगवान गुम है,
1: वाह वाह,
3: छाया है सब और अंधेरा है, दिशा अदृश्य दिशा अदृश्य, दिनमान गुम है, दिनमान गुम है,
2: बहुत सुंदर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे श्री हीरालाल साहनी जी, उन्होंने मिट्टी की बात की है, और मुझे मिट्टी की बात आई तो एक शेर याद आ गया कि निकल जाती है अपनी रूह तो कुछ भी नहीं रहता। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि न जाने कैसी मजबूरी में बेची थी बुजुर्गों ने, न जाने कैसी मजबूरी में बेची थी बुजुर्गों ने, उधर जाता हूँ तो नज़रें हवेली खींच लेती है, और निकल जाती है अपनी रूह तो कुछ भी नहीं रहता, हमारी जिस्म की मिट्टी को मिट्टी खींच लेती है।
2: बहुत सुंदर,
1: निकल जाती है अपनी रूह तो कुछ भी नहीं रहता, हमारे जिस्म की मिट्टी को मिट्टी खींच लेती। थोड़ा सा समय है, हम चाहते हैं कि गजल के दो तीन शेर मैं सुना देता हूँ, आप लोग की जैसी
3: नहीं,
1: सहमति सुना दें।
3: हाँ,
1: एक गजल के दो तीन शेर सुन लीजिए। आँख में आंसू दिल में गम,
2: बहुत वाह वाह,
1: फिर भी नहीं कुछ कहते हम, आँख में आंसू दिल में गम, फिर भी नहीं कुछ कहते हम। एक मतलब और सुन लीजिए। एक है दिल और लाखों गम, एक है दिल
2: लाखों गम
1: और लाखों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम,
2: क्या बात,
1: एक है दिल और लाखों गम, फिर भी

0: आंखें नम।
1: दोस्त
0: एक शेर सुने की जो बेटी अहुर बत में पली, जो बेटी अहुर बत में पली उसकी आंखें हरदम नम, उसकी आंखें हरदम नम, उसकी आंखें हरदम नम। और जो सबसे ज्यादा आज समाज में और देश में जिस चीज की जरूरत है, एक शेर पेश करता हूं। दिल के लहू से रोशन कर, दिल के लहू से रोशन कर, प्रेम का दीप न हो मद्धम, प्रेम का दीप
1: क्या जलवा
0: न हो

0: पायल की छम छम तेरी पायल की छम छम। इस कवि गोष्ठी को हम यहीं विराम देना चाहते हैं, ये कहते हुए कि एक कतरा ही सही आंख में पानी तो रहे, एक कतरा ही सही आंख में पानी तो रहे, ऐ मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि थे हीरा लाल सहनी, दीनानाथ लाल, मिथिलेश कुमार सिन्हा, भारती रंजन कुमारी और सुधीर कुमार सिंह। कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे थे शंकर कैमोड़ी। इसी के साथ ही साहित्य के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यही समाप्त हुआ चाहते है। अमलनाथ ठाकुर को दीजिए विदा, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी का पूर्व प्रसारित अंक। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी

0: सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाश।

0: जी सर, जनवरी 2024 में लगा था।
1: अच्छा, यानी के दो साल के बाद जो है, दो साल प्लस हो गया ना, दो साल पाँच महीने के बाद,
0: ढाई साल हो गया।
1: हाँ, दो साल पाँच महीना हो गया आपके कॉल को आए हुए, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं। तो बहुत दिनों के बाद कॉल लगा है, खुशी तो महसूस हो रही होगी आपको।
0: दरभंगा आकाशवाणी से सर इतना जुड़ा हुआ हूँ कि फोन लगे नहीं लगे, आकाशवाणी दरभंगा को सुनते हैं तो खुशी ही खुशी मिलती है।
1: अच्छा, सुनते हैं आप वहाँ राजस्थान में आकाशवाणी दरभंगा?
0: परमानेंट सुनते हैं सर।
1: अरे वाह, बहुत खूब।
0: शुरुआत ही आकाशवाणी दरभंगा से शुरू करते हैं, 5:45 पर आप वहाँ से प्रसारण शुरू कर देते हैं सर।
1: जी बिल्कुल सही समय आप बता रहे हैं, सुबह 5:45 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। तो आप जो समय बता रहे हैं उसके अनुसार आप नियमित रूप से सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, ये हम भी मान रहे हैं इस बात को। और हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ सुनते हैं हमें, राजस्थान में आप सुन रहे हैं। और आप सब हमारे इस केंद्र के एक जो कहते हैं परिवार है, उसका एक अंग हैं आप, आकाशवाणी दरभंगा परिवार का अंग हैं आप। हमें काफ़ी खुशी हुई,
0: 50 साल से सर बचपन में गांव में सुना, अब यहाँ सुनता नहीं हूँ तब तक ऐसे मन बेचैन हो जाता है, आकाशवाणी दरभंगा तो सुनना ही सुनना है सर।
1: चलिए, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज कार्यक्रम में आपका पहला कॉल शामिल हो रहा है, फरमाइश बताएं।
0: सर मैं 1950-60 के बीच का कोई पुरानी फिल्म का गाना अपने पसंद का सर सुना दीजिए।
1: तो 1956 की फिल्म का गाना हम सुनवा देते हैं आपको, सुनेंगे?
0: सुनाइए सर।
1: ये गाना है राजहट फिल्म का, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, शब्द रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत है शंकर जयकिशन का। तो सुनिए ये गाना फिल्म राजहट का। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: इस समय आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। एक कॉल हम तक आ गया है, जानते हैं कौन साहब हैं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, अपना तारुफ कराएं, परिचय दें।
1: हाँ, मुबारकपुर दिल्ली से अकरम बोल रहे हैं, गांव कोठवाना जिला दरभंगा वाली है।
0: जी अकरम साहब, पहचान गया आपको, कैसे हैं, सब बढ़िया है?
1: हाँ सब बढ़िया है, बारिश ही यहाँ नहीं हो रहा है तो
0: गर्मी। बारिश तो इधर भी छिटपुट कहीं कहीं हो रही है, तो पूरी पूरी बारिश तो हो नहीं रही है। और फरमाइश बताएं अक्रम साहब, आज कार्यक्रम में।
1: हाँ फरमाइश तो पुरानी फिल्म का हम गाना सुनते हैं, समझ गए भैया, फिल्म का नाम भी एक से एक रखा हुआ है। फिल्म के नाम है चाचा जिंदाबाद।
0: चाचा जिंदाबाद जी।
1: जी बहुत का गाना है लता जी की आवाज में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना है, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म का नाम है चाचा जिंदाबाद, बैरन नींद ना आए। आप तक पहुंचा रहे हैं जी, जी आप तक पहुंचा रहे हैं भाया कोटवन्ना मुबारकपुर दिल्ली में, ये गाना सुनिए। शब्बख है।

0: सितारे ही सिर्फ रास्तों में न खो रहे थे, सितारे ही सिर्फ रास्ते में न खो रहे थे, चराग और चांद भी गले मिलकर रो रहे थे। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, मैं आनंद कुमार चौधरी बोल रहा हूँ सर, मकरमपुर से।
0: आनंद कुमार चौधरी जी, अरे आपका नाम ही क्या मजेदार नाम है, आनंदित हो उठ रहा है मन।
1: बहुत आनंदित है सर, लगता ही नहीं रहता है सर, पूरे प्रोग्राम समाप्त हो जाता है।
0: अभी तो आपका अभी तो कॉल आपका शामिल हो रहा है आनंद जी, अभी हम आनंदित हो रहे हैं आपके कॉल जी, आपका कॉल शामिल हुआ तो हम आनंदित हो रहे हैं
1: जी। अनायास लग गया तो आप सोचे कि आप आपसी तो कहे कोई बढ़िया गाना सुनाने के लिए, लेकिन खैर भाभी फिल्म का गाना सुना दीजिए सर, चल उड़ जा रे पंछी।
0: चल उड़ जा रे पंछी भाभी फिल्म का अच्छा गाना है
1: जी सर,
0: आपकी पसंद अच्छी है आनंद जी। आपने कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना
1: जी सर, गुड नाइट सर।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार
1: जी। हेलो सजाद साहब, नमस्कार
0: जी। परिचय दें श्रीमान जी।
1: जी माधोपट्टी क्योटी प्रखंड से हम लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं।
0: माधोपट्टी से लक्ष्मण जी?
1: जी जी
0: जी। कैसे हैं लक्ष्मण जी?
1: ठीक है, पर माने पानी तो इधर भी पानी नहीं हो रहा है।
0: वो थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, लेकिन बहुत तेज वर्षा नहीं हो रही है और धरती पूरी तरह से भीग भी नहीं पाती है, इतनी वर्षा ही होती है। और धान की खेती आपकी तरफ कैसी है? बिचड़ा को लगाया जा रहा है खेत में?
1: हाँ, कुछ कुछ खेती भी हुआ है, लगा भी है धान, रोपनी
0: मतलब बिचड़ा की रोपनी हुई है।
1: जी
0: जी, चलिए देखिए, मालिक पर हमें आशा रखनी चाहिए और आशा हमेशा आशा का दामन पकड़ के रहना चाहिए। उम्मीद जो है ना वो बड़ी चीज।
1: 3-4 महीने के बाद बात हो रही है आपसे।
0: जी जी जी। तो आज समय बिल्कुल अब निकट आ पहुंचा है कि हम आप तमाम श्रोताओं से विदा लेंगे। फरमाइश अपनी बता दें।
1: सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना है, फूल तुझे भेजा हूँ खत में।
0: तो हम आप तक गाना भेज रहे हैं।
1: जी जी, चलिए बहुत
0: चलिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना।
1: नमस्कार।

0: रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। इस अदा का तेरी जवाब नहीं, मेहरबानी भी सरगिरानी भी। तो श्रोताओं, इस गाने के साथ ही समय अब वहाँ आ पहुँचा है जहाँ हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे जुदा होते हैं। लेकिन ये जुदाई बहुत कम दिनों की होती है, फिर हम मिलने के लिए आ जाते हैं, आप हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं, और ये मिलने बिछड़ने का सिलसिला निरंतर जारी रहता है। तो आज भी समय जब इजाज़त नहीं दे रहा हमसे आपके जुड़े रहने का, तो चलते चलते आपको बता दें कि आज जो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा, इसके प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक थे असद दाऊद, और मैं था आपके साथ सज्जाद अहमद खान। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, सुनिएगा अपनी फरमाइश के पसंदीदा फिल्मी नगमे। और अब चलते चलते, तेरे दिन अच्छे हैं सो हमसे किनारा कर ले, तेरे दिन अच्छे हैं सो हमसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग बुरे वक्त में काम आते हैं, हम बुरे लोग बुरे वक्त में काम आते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: हेलो आकाशवाणी।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के

0: अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। इसी मीटर पर कल सुबह 5:45 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।